मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की आठवीं तिथि।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण

0: विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा समिति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलो मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का विचार। आज का विषय है विवेक। वाचक स्वर मिलिंद पांडे का है।
2: विवेक के बिना केवल क्रिया से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। शक्ति विवेक में है, क्रिया में नहीं। क्रिया करने में करण की मुख्यता रहेगी तो करण का आदर होगा। करण का आदर ही अंतःकरण की शुद्धि है। अंतःकरण की अशुद्धि वास्तव में कर्ता की अशुद्धि है, क्योंकि कर्ता का दोष ही करण में आता है। जैसे मनुष्य चोरी करने से चोर नहीं बनता, प्रत्युत चोर बनकर चोरी करता है। चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ होता है। अगर

ये आकाशवाणी बीकानेर का पूर्वी मंच चैनल है। रात्रि के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुति भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। पहली स्तुति अनुप जलोटा और साथियों के स्वर में।

जगदीश सिंह लोकसाखी की गाय इस नियोजित के साथ ही आज का बनाना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के डी चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के समय बजकर 30 मिनट हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरित मानस गान का सौवां पाठ। इस पाठ में आज आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 286 से दोहा संख्या 288 की अंतिम चौपाई तक का पाठ। मुख्य सुर

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया, फिर भी

ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधि पूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

रामचरित मानस गान के सरस्वर पाठ में अभी आपने सुना बालकांड की दोहा संख्या 286 से दोहा संख्या 288 की अंतिम चौपाई तक का पाठ। मुख्य स्वर ए हरि हरिम कथा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। निजी प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। संसद समीक्षा आप सुन सकते हैं रात 8 बजे। हमारी इसी सभा में शाम 4 बजे आप सुनेंगे विशेष सभा के दौरान कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

जिले की चिट्ठी का समय रहेगा शाम 6:40 और सिंधी कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर 12:10 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। चर्चा के विषय रहेंगे सुरंगी ऋतु आई मेरे देश, सावन माह प्रारंभ, पारिवारिक कृषि, मौसम पूर्वानुमान सूचनाओं से अपडेट रहे, मंगला पशु बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसी के साथ लोक संगीत सुना जाएगा। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मुक्ता जैन और रामस्वरूप विश्नोई। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:05 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है संतुलित आहार और स्वास्थ्य। इसी के साथ साथ मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस, नाबार्ड, प्रकृति के साथ समय गुजारें, ग्रीन हाउस प्रभाव, इन सभी के बारे में लघु जानकारियां दी जाएंगी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुमन विश्नोई और पूजा रंगा। सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 1:05 पर। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे डिजिटल होते हमारे गांव, विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस, कड़े कानून और हेल्पलाइन, थाली में संपूर्ण पोषण, मोटे अनाज का महत्व, बच्चों को अजनबियों से सावधान रहने और आपातकालीन नंबर याद कराएं। इसी के साथ कुछ बातें रसोई की होंगी, कुछ ब्यूटी टिप्स और साथ में सुनाएंगे लोक संगीत। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे खुशबू हर्ष और सुरभि बोहरा। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे 9:30 पर। सौरभ कार्यक्रम में सुनिए कमल किशोर पारेख का कविता पाठ, समय रहेगा 8:30।

0: ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दीवानदान रत्नों की वार्ता। विषय है कृषि विभाग द्वारा कृषकों को दो सुविधाएं।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज अब हम बात कर रहे हैं कृषि विभाग द्वारा कृषकों को दे सुविधाएं। हमारे किसान भाइयों को सरकार कृषि की उन्नत तकनीक अपनाने और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कृषकों को सुविधाएं प्रदान समय समय पर करता रहता है। किसान भाइयों आज हम बात करते हैं कि वो कौन सी सुविधा है जो हम किसान भाइयों को सरकार द्वारा उपलब्ध है और इस सुविधाओं से किसान के लिए एक वरदान साबित होता है जिससे हम अपने उत्पादकता खेती में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि कर आमदनी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बड़ी सुविधा है किसान भाइयों जो हमें प्रदान जल प्रबंधन में डिग्गी निर्माण। एक किसान को न्यूनतम 4,00,000 लीटर और उससे अधिक भराव की क्षमता वाली डिग्गी निर्माण के लागत का 75% या अधिकतम 3,00,000 रुपए जो भी हो एक सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 85% अधिकतम 3.5 लाख रुपए दे है। खेत में तलाई निर्माण या पौंड निर्माण के लिए द्वारा न्यूनतम 400 घन मीटर आकार के कच्चे फॉर्म पौंड निर्माण में लगभग अधिकतम 63,000 रुपए और प्लास्टिक लाइनिंग पौंड निर्माण लागत का 60% या अधिकतम राशि 90,000 रुपए अनुदान दे है। लघु सीमांत कृषकों को इकाई का लागत का 10

0: अतिरिक्त अनुदान दे भी है। इस प्रकार किसान भाइयों लगभग 1,05,000 रुपए खेत की तलाई निर्माण पौंड निर्माण के लिए किसानों को दे हैं। जल होज निर्माण 1,00,000 लीटर की भराव क्षमता वाला जल होज निर्माण के लिए लागत का 60% अथवा अधिकतम 90,000 रुपए हमें टांके के लिए निर्माण में दे हैं। पाइपलाइन के लिए लागत का 50% या अथवा SDPA द्वारा पाइप जो 35 रुपए प्रति मीटर PVC पाइप है वो 20 रुपए प्रति मीटर SDPE फ्लैट ट्यूब पाइप अथवा अधिकतम राशि 15,000 रुपए जो भी अनुपातिक रूप से कम हो अनुदान दे है। लघु सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 10% अतिरिक्त अधिकतम 18,000 रुपए अनुदान दे है। इसके अलावा जो कृषि विषय में पढ़ाई कर रहे छात्र हैं उनको भी लिए छात्राओं के लिए विशेषकर 10+2 यानी 12वीं के लिए 5,000 रुपए और कृषि स्नातक स्नातकोत्तर के लिए 12,000 रुपए अनुदान दे हैं और PhD जो करते हैं उनके लिए 15,000 रुपए अनुदान दे हैं। किसान भाई राज्य में स्थित उर्वरक और बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा कृषकों को द्वारा बीज और उर्वरक नमूने के लिए जांच और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा भी करवाया जाता है जो सबसे बड़ी सुविधा के रूप में कृषकों को दे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल में 2% और रबी में 1.5% फसलों हेतु 5% कृषक प्रीमियम राशि रखी गई है। सिंचित क्षेत्र के लिए किसान भाइयों प्रीमियम की सीमा 25% और असिंचित क्षेत्र के लिए अधिकतम 30% है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रीमियम दर आने पर शेष प्रीमियम राशि का भार राज्य सरकार द्वारा दे होता है। फसल बीमा योजना कृषकों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है लेकिन ऋणी कृषकों को योजना से पृथक होने के लिए अंतिम तिथि से पूर्व लिखित में आवेदन करना होता है। बीमित फसल किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बुवाई नहीं कर पाता है तो वह जोखिम में शामिल है, उसके अनुसार दावा राशि मिल सकती है। ओले गिरना, जल भराव, बादल फटना, प्राकृतिक आग, भूस्खलन आदि नुकसान होने पर आकलन द्वारा फसल बीमा के राशि प्रदान प्रावधान है और यदि फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में बंडलों के रूप में सूखने के लिए रखी जाती है उस दौरान चक्रवर्ती वर्षा, ओलावृष्टि, बेमौसम वर्षा आदि का नुकसान होता है तो किसानों को दावा राशि दिए जाने का प्रावधान है। और किसान भाइयों बीमा इकाई क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर पटवार और तहसील स्तर पर लागू होता है। और किसान भाइयों मृदा परीक्षण के तहत किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्व क्षारीय लवणीय नमूनों की जांच, जिप्सम की आवश्यकता मात्र पानी के नमूनों की जांच हेतु नमूना राशि के रूप में अनुदान दे है। जिप्सम क्षारीय भूमि सुधार के लिए किसान भाइयों जिप्सम का भी किसानों को प्रति मैट्रिक टन दर का 50% अनुदानित दर के किसानों को जिप्सम उपलब्ध कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात किसान भाइयों हाल ही में प्रत्येक किसानों को अधिकतम 400 मीटर की सीमा तक लागत का 50% अथवा अधिकतम राशि 40,000 रुपए जो भी कम हो अनुदान एकल कम्युनिटी बेसिक पर कम से कम 3 कृषक एवं 3 हेक्टर जमीन हो को दे है। 400 मीटर की कम की लंबाई की तारबंदी पर अनुदान की राशि गणना अनुपातिक आधार पर जाकर अनुदान दे होगा। कांटेदार तार का अनुदान लघु सीमांत कृषकों को 10% अतिरिक्त अनुदान लागत का 60% या ज्यादा से ज्यादा 48,000 रुपए कांटेदार तारबंदी पर अनुदान दे है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आपने सुनी दीवान दाम्पत्यों की वार्ता। विषय था कृषि विभाग द्वारा कृषकों को दे सुविधाएं। और आइए अब सुनते हैं लोक भजन

0: सिमरन देवी के स्वर में आपने कबीर का ये भजन सुना। हम आकाशवाणी बीकानेर के दिल अमर उजाला से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:20 होने को है। कुछ ही पहले में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: पीएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुद्ध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्य अभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्व क्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिक सहभागितायाः, सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादक मुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोर दण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24,2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके 10 वर्षात्मकः कारावासः, 10 कोटि रूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासित

0: प्रदेशः दैनन्दिनवाद श्रवणाय विशेष द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्र गोप्यता भंग प्रकरणेषु शीघ्र न्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट टैग फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: राज्यसभायां 26,000 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतद् विधेयकं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 170th संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रिय चेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय सहैव स्वतन्त्रता संग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिक प्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्र के अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतुः 4 मृत्युमुपगताः, सहैव 4,00,000 जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावण मासस्य वार्षिकी कावड़ यात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गंगाजलम् आनेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशाल यात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश सर्वकाराभ्यां व्यापक प्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। समय मिलाइए श्रोताओं, सुबह के ठीक 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ नई जानकारियां आप तक श्रोताओं पहुंचाने के प्रयास रहता है। खासकर जो आज का दिवस होता है, विशेष दिवस होता है, उसके बारे में भी आप तक सारी जानकारियां पहुंचाई जाती हैं। आज का दिन विशेष हम मना रहे हैं विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के रूप में। आप सभी जानते ही हैं कि मानव तस्करी एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा कलंक है जिसको सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो पाता है। कई बार ऐसा हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया जाता है, महिलाओं को अगवा किया जाता है, जो युवा पीढ़ी है उसे बरगला करके अगवा किया जाता है।

जाया जाता है कहीं पर भी, और फिर ये खेल शुरू होता है मानव तस्करी का। और इसी के विरुद्ध आज का दिन यानी कि 30 जुलाई का दिन मनाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इसको मनाने का उद्देश्य कि आप और हम सभी लोग जागरूक हों, और अगर कहीं ऐसा अवसर आता है कि कोई हमें बरगलाने की कोशिश करता है, प्रलोभन में फंसाने की कोशिश करता है, तो हम सचेत रहें, सावधान रहें, सजग रहें। खास करके अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी इस चीजों के बारे में बताएं कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में अगर आप ही जाते हैं तो उसकी कही हुई बातों पर विश्वास न करें। कोई भी चीज अगर खाने पीने को दी जाए तो उससे भी दूर रहना बहुत जरूरी है। जागरूकता बढ़ाना और अपने आप से वादा करना कि हम अपनी सुरक्षा तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर कहीं पर हम ऐसा होता हुआ भी देखेंगे तो उसकी रक्षा करने भी हमारा परम कर्तव्य होगा। अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसीलिए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है। श्रोताओं, मुख्य खास बात यह है कि इसकी शुरुआत सन 2013 में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता किया गया सन 2013 में। इतने लंबे समय में बहुत से अभियान ऐसे चलाए गए जिनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके, और आज भी देखिए इतनी महती आवश्यकता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं इस दिवस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है मानव तस्करी का। इस बार जो हम 2026 में ये वर्ष मना रहे हैं, ये इसकी थीम है ऑनलाइन धोखाधड़ी और जबरन अपराध के लिए हो रही मानव तस्करी पर लोगों को जागरूक किया जाए। आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन जो धोखाधड़ी है वो किस कदर अपना जाल बिछा चुकी है। नित नए रोज नए एक प्रकार आ जाते हैं, नया तरीका आ जाता है ऑनलाइन धोखाधड़ी का। जबरन अपराध करवाने के लिए भी लोगों को मजबूर किया जाता है, उन्हें इस तरीके से मुहपाश में बांध लिया जाता है, बंधन कर दिया जाता है कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाते हैं, और उन्हें कोई ना कोई ऐसा आपराधिक कृत्य करना ही पड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें और जागरूक रहें, क्योंकि यही जो चीजें हैं ये हमें इन सब चीजों से बचा सकती हैं। क्योंकि जो लोग ये कार्य करने वाले हैं, समझिए कि उनका दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है, वो न जाने कैसे कैसे अवसरों की तलाश में है कि कहीं पर भी कोई हमें जरा सा भी लूज पॉइंट मिले और वो उसे पकड़ ले और मानव तस्करी में हम फंस जाए। तो इस आपराधिक जो कृत्य है इससे बचने के लिए हमें जागरूक रहना ही होगा। सबसे मुख्य उद्देश्य ये कि पीड़ितों की पहचान करनी जरूरी है, अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है, और समाज में इसके प्रति रोकथाम के लिए उपाय मजबूत करना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि हम जागरूक रहें, सजग रहें, तभी हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण कलंक से, इस अपराध से हम बच सकते हैं। सभी लोग सुखी रहें, किसी भी ऐसे कृत्य में न फंसे, इसीलिए जरूरी है कि हम जो भी जानकारी हम तक है सभी तक पहुंचाए। बातों बातों में हम बहुत सी ऐसी बातें बताएं, घर में अगर बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, तो भी बहुत अच्छे से स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को हम कह सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। खासकर जो बड़े बुजुर्ग हैं, देखिए वो भी अब इस गिरफ्त से पीछे नहीं है, तो ऐसे में उनको भी बचाना, उनको भी समझाना बहुत जरूरी है कि आप अपनी उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी लालच में आने की जरूरत नहीं है। अगर लालच में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आपस में संवाद जरूर करें। जब संवाद होता है तो बहुत सी बातें निकल के आती हैं, और इन्हीं बातों के माध्यम से जागरूकता बढ़ती है। और श्रोताओं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपस में जब प्रेम के भाव होते हैं तो बातों का बहुत बड़ा मायने होता है, बहुत बड़े मतलब निकलते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, हमें आपस में प्यार से ही रहना चाहिए।

स्वतः अपने देश की तो बात ही क्या है, जितनी बात की जाए उतना कम है। इसमें हम रह रहे हैं यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत देश विविधताओं का देश, एक ऐसा देश जिसने सभी को अपनाया। चाहे कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आ जाए, भारत उसे अपना ही लेता है। यहाँ की धरती ऐसी है, यहाँ की भूमि ऐसी है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे इस देश में इतने रंग हैं कि शायद इतने रंग हमने अपने जीवन में कभी देखे भी नहीं होंगे। हर पल एक त्योहार सेलिब्रेट होता है, नित नए नए कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे से मिलकर आपसी प्रेम की जो भावनाएं जागृत होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में ही होती हैं। गर्व की बात यह है कि हमारे जो रक्षक हैं वो चहुआ हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, इस भारत देश की निगरानी के लिए। और यही निगरानी आपको और हमको सबको सुरक्षित रखती है। ये वीर सैनिक चाहे किसी भी शाखा के हो, चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, कुछ भी हो, लेकिन हर जगह अपना परचम लहराते हुए हमारे वीर सैनिक हमारे देश को हमेशा उस श्रेणी में लेकर के आते हैं जहां पर सर्वोच्च स्थान होता है। और ये सर्वोच्च स्थान हमारे भारत देश का पूरे विश्व में अपना डंका बजाता है। श्रोताओं, हमारे देश की खासियत है, इसमें रहने वाले नागरिकों की खासियत है, इस देश के कानून की खासियत है, संविधान की खासियत है। और ऐसे में आपके और हमारे रहने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून बने हुए हैं, जिसके हिसाब से हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं और तो हमारे कुछ दायित्व भी हैं। आज बात करते हैं हमारे मूल कर्तव्यों की, फिर कभी बात होगी दायित्वों की। श्रोता, देश में रह रहे हैं तो हमें बहुत सी बातें मानना और जानना भी जरूरी है। आज के मूल कर्तव्यों की सूची में सबसे पहली बात है संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना। ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि संविधान में जो भी सूचित है, वर्णित है, उसका पालन करना, अक्षरश पालन करना हम सभी के लिए जरूरी है। और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान और आदर तो आप और हम सभी जानते ही हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के महान आदर्शों को संजोए रखना, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। जो भारत एक है, अखंड है, उसकी रक्षा करना हमारा सभी का कर्तव्य है। देश की रक्षा और आधान पर राष्ट्र सेवा करना, ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है श्रोताओं, कि जब भी हमारे देश को जरूरत पड़े तो हम उसके आधान पर अपने आप को हमेशा तत्पर और तैयार रखें कि हम उसकी सेवा कर सकें। देश की रक्षा करने के लिए, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारे तीनों जल, थल और वायु की जो सेनाएं हैं वो तत्पर हैं ही, लेकिन कभी ऐसे मोड़ पर जरूरत पड़े कि आम पब्लिक को भी आगे आना पड़े तो ऐसे में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। आपसे भाईचारे की भावना को बढ़ाना, स्त्रियों का सम्मान करना, ये भी हमारे इस मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है। मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, जैसा कि हमने आपसे बात करी कि भारत विविधताओं का देश है, और ऐसे में संस्कृति की बात की जाए तो हर कदम पर यह संस्कृति हमें अपनी छटा बिखेरती हुई नजर आती है, और इसकी परंपरा की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण

वन, वन्य जीव, वन संपदा, इसकी रक्षा करना, ये भी हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। देखिए, हिंसा से कोई समाधान नहीं होता, यहाँ पर हम सभी जानते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता का प्रयास करना, जो भी कार्य, जो भी अवसर, जो भी ऐसे पल हमारे जीवन में आते हैं जो सामूहिक रूप से सेलिब्रेट किए जाते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी होते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, यह हमारे मूल कर्तव्य में शामिल है। और श्रोता, इसी के साथ सन 2002 में 86 में संशोधन किया गया, इन कर्तव्यों के साथ जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो युवा पीढ़ी हमारी शिक्षित होगी और यही युवा हमारे आगे चल के हमारे इस देश का निर्माण करेंगे। तो हमारे देश, जिसके लिए हम कहते हैं कि हमारा तन मन धन सब न्योछावर है, उस देश के लिए इन कर्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, जीवन जीने के लिए जैसा कि हमने आपसे बात की, संविधान के जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको जानना हमें बहुत जरूरी है और उन्हीं के साथ साथ उनका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना जरूरी है। और उसमें एक बात हमने ये भी जानी कि हमें हिंसा नहीं करने का भी अपना कर्तव्य निभाना है, यानी कि हम अहिंसा को अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अहिंसा एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में हमारे लिए आत्मसात करने के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन और कर्म से ठेस न पहुंचाने या नुकसान न देने की जीवन शैली को अपनाना अहिंसा कहलाता है। ये अहिंसा जीवन और दर्शन दोनों का मेल है, प्रेम और कर्म पर आधारित है ये अहिंसा। किसी भी जीव के प्रति मन में बुरा न सोचना, कड़वा न बोलना और शरीर से चोट न पहुंचाना, सभी जातियों, प्राणियों, इंसान, जानवर, पौधों सभी का सम्मान करना, शांति, दया और परोपकार को अपने जीवन का मुख्य नियम बनाना। बहुत छोटी छोटी बातें ये लगती हैं श्रोताओं, शांति अपनाना, दया करना, परोपकार करना,

किसी भी प्राणी के लिए, चाहे फिर वो जानवर हो, पौधे हो, इंसान हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचाना और उनका सम्मान करना, ये सभी अहिंसा के रूप हैं जो हमें अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। और बापू का बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी है कि आप अहिंसा के माध्यम से अपना जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो श्रोताओं, क्यों ना हिंसा को दरकिनार करके अहिंसा को ही हम अपने जीवन में उतारें। पेड़ पौधे, जानवर, हालांकि अपनी भाषा में बहुत कुछ कहते हैं, बस समझने वाला होना चाहिए। किस तरीके से ये अपनी व्यथा कहते हैं ये हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंसान तो इंसान से कह सकता है लेकिन इनकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी भी प्रकार का इनका अपमान न होने पाए, ये हमें अपने प्रयासों में शामिल करना चाहिए। इंसान का इंसान से भाईचारा बहुत जरूरी है। आज के जीवन में हम देखते हैं कि लोगों के अंदर धैर्य बहुत कम होता जा रहा है। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में आए दिन कुछ न कुछ झगड़े फसाद सड़कों पर हम देखते हैं, होते ही रहते हैं, गली मोहल्लों में होते रहते हैं। इसीलिए अपने आप को धैर्य रूपी चादर से ओतप्रोत रखना है, ओढ़े रखना है इस चादर को, क्योंकि धैर्य जितना हमारे अंदर होगा उतने ही हम अहिंसक होंगे, और ये अहिंसा हमारे जीवन दर्शन को आगे बढ़ाएगी, और ये जीवन दर्शन प्रेम और प्यार से भरा हुआ होगा। यही प्रेम और प्यार, श्रोताओं, हमें अपने आप से जीवन में लाना है और प्रयास करना है कि हम अपने आप को कभी भी ऐसे मोड़ पर न लेकर के आए कि हमें उग्र होना पड़े या हिंसा का साथ देना पड़े या हिंसा करनी पड़े। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अहिंसक बनाते हुए हमें प्रेम और प्यार की दौड़ को बढ़ाना है। तो इसी दौड़ को बढ़ाते हुए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, और अब समय हो रहा है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

गणेश के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का लिखा गीत आपने सुना। आशा भोसले की आवाज में फिल्म का नाम था ठाकुर जर्नैल सिंह।

0: नीला आकाश, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहन रफी की आवाज में। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

जगदीश सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत आपने सुना। अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म का नाम था प्रेम गीत। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू जंगल से।

0: फिल्म मिश्र की गायक फिल्म आई हूं की बिना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये दूरी हमारा चैनल है। सुबह के 8 बज रहे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया। वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। दही मानस के निशुल्क नंबर 144116 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन

0: ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेंगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायन और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजिलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजिलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखाभाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जन स्वराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीब

0: हर जुमा मरीज आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बन गए 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है।

0: साल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलदमु मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी नटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय नटार पहले से अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे थी। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाती को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई

0: को मुख पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए संदेश बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 30% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों के 100 मीटर 3:47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीत कर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात, ये अंक समाप्त।

0: of circulation simultaneously in 8 states and Union Territories. And finally, ahead of the Delhi High Court's review of the capital's stray dog management measures, a ground inspection suggests the problem in Delhi remains unresolved, writes the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes anti-PPD amendment bill with stricter punishment of up to 10 years in jail. Polling begins for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Satri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwar Yatra for Shravan month to begin today. And para-athlete Dilip Tawit wins gold while Mohammad Basi bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: सुबह के 8:30 हुए हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम सौरभ। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं कमल किशोर पारिक का कविता पाठ।
3: नमस्कार, मैं कमल किशोर पारिक आपकी सेवा में कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली कविता है, उम्र सारी हम तो रस्मों को निभाते आए, खूब दर्द दिल सहा पर फिर भी मुस्कुराते रहे। हमारे से जिंदगी सदा ही आंख मिचौली करती रही, हमारे से जिंदगी सदा ही आंख मिचौली करती रही, पर हम तो सदा जिंदगी से बेफिक्र आंख मिलाते रहे। हमारे पे न तो कभी जिंदगी मेहरबान हुई, हमारे पे न तो कभी जिंदगी मेहरबान हुई, परंतु हम तो गीत रसीले जिंदगी भर गाते रहे। जो कभी किसी के सम्मान में न शरीक हुए, जो कभी किसी के सम्मान में न शरीक हुए, वो खुद सदा ख्वाबों की महफिल सजाते रहे। हाँ हाँ ना शुक्रा थी दर्द भी देती पर प्यार से, हाँ ना शुक्रा थी दर्द भी देती पर प्यार से, इसी तरह साथ एक दूजे का निभाते रहे। हमारे सपनों में भी बिजलियाँ यूं ही गिरी, हमारे सपनों में भी बिजलियाँ यूं ही गिरी, तो भी हम आशियाँ ता जिंदगी बनाते रहे। हमारे पास तो खजाना सिर्फ अशकों का था, हमारे पास तो खजाना सिर्फ अशकों का था, हम उन अशकों को मोती बना के लुटाते रहे। नैनों के तीखे बाणों से हिफाजत जरूरी थी, नैनों के तीखे बाणों से हिफाजत जरूरी थी, फिर भी अपने बेदर्द दिल की खैरियत मनाते रहे, फिर भी अपने बेदर्द दिल की खैरियत मनाते रहे। दूसरी कविता है, रात के पर्दे में जब चुपके से कोई दर्द गायब होता है, रात के पर्दे में जब चुपके से कोई दर्द गायब होता है, सुबह सवेरे वही दर्द मेरे दिल से बयां होता है, सुबह सवेरे वही दर्द मेरे दिल से बयां होता है। जख्म कोई द्वार तो नहीं कि हम ताला लगा कर रखें, जख्म कोई द्वार तो नहीं कि हम ताला लगा कर रखें, जख्म तो हर हाल में ही खुलेआम सरेआम बयां होता है। वो कभी नीला समुद्र सा है, कभी हरियाली का द्वीप सा, कभी गरजती लहरों सा, कभी खुशबूदार गुलाबों से घिरा होता है। हमने तो स्वयं ही दृष्टिगत किए हैं आवाज के उड़ते हुए रंग, हमने तो स्वयं ही दृष्टिगत किए आवाज के उड़ते हुए रंग, कोई आंसू से जब खूब परेशान कर रहा होता है। धूल उड़ती है तो गर्द से खूब डग जाते सारे ही पेड़, धूल उड़ती है तो गर्द से डग जाते हैं सारे ही पेड़, ओस की बूंद जो गिरती है तो एक हर्ष बपा होता है। रोग तो फिर भी बीमारी ही है, पत्थर को नहीं हो सकती, क्यों दर्द बेहिसाब बता तेरे मेरे दिल में क्यों होता है। रोग तो फिर भी बीमारी ही है, पत्थर को नहीं हो सकती, क्यों दर्द बेहिसाब बता तेरे दिल मेरे दिल में क्यों होता है। कम नहीं दुख की लहरों की बेचैनी तनाव परंतु, कम नहीं दुख की लहरों की बेचैनी तनाव परंतु, चांदगढ़ निकले तो ये प्यार का तूफान होता है, चांदगढ़ निकले तो ये प्यार का तूफान होता है। वो बताओ कौन था, वो बताओ कौन था जो खून के बहाव में बह गया, जख्मों की एक गहरी परत सी चेहरे पे सह गया, जख्मों की एक गहरी परत सी चेहरे पे सह गया। मुझको मत रोक, मुझको मत रोक, मेरी मंजिलों पे मेरी नजर है, मुझको मत रोक मेरी मंजिलों पे मेरी नजर है, खुद को तो पहले उठा ले शायद मेरे कदमों में गम रह गया। पत्थर का वो तेरा आशियाना जिसपे तुझे नाश था, पत्थर का वो तेरा आशियाना जिसपे तुझे नाश था, शबनम की

गिरी और शायद बह गया। तीसरी कविता है माँ। एक मुद्रा हाँ तुम्हारी, एक मुद्रा हाँ तुम्हारी, हाँ माँ कभी विचलित करुणा मई सी, कभी विचलित करती करुणा मई सी, स्नेहिल सी दृष्टि अनुपम माँ तेरी, स्नेहिल सी दृष्टि थी अनुपम माँ तेरी, तुम एक अगाध सागर स्नेह का ममता का, तुम थी एक अगाध सागर स्नेह का ममता का, निर्झर दुलार का प्यार का अवर्णनीय, निर्झर दुलार का प्यार का अवर्णनीय, हाँ माँ उरण भला कौन हो सकता, हाँ माँ उरण भला कौन हो सकता, हे माँ निर्मला निर्मल रूप मन में तुम, सदा सर्वदा मेरे पास ही मेरे हृदय में बसी, माँ की महिमा परंपार कौन करे वर्णन, माँ ने अपने में संजोई हिम्मत असीम, माँ ने अपने में संजोई हिम्मत असीम, माँ चट्टान सी फौलादी जज्बा लिए एक मूरत है, माँ चट्टान सी फौलादी जज्बा लिए एक मूरत है, ईश्वर को नहीं माँ को देखा है मैंने, माँ सदा माँ तेरे ही ध्यान में हूँ। अगली मुक्तक है, औरत में है सब्र की बेमिसाल ताकत, औरत में है सब्र की बेमिसाल ताकत, उम्मीदों की रिमझिम में हमेशा भीगती, उम्मीदों की रिमझिम में हमेशा भीगती, खुली पगडंडियां करती इस्तकबाल तेरा, खुली पगडंडियां करती इस्तकबाल तेरा, न हो गुलाब से मुखड़े पे भला क्यों शर्म का पर्दा, थरथराहट याने की होठों में है क्या स्वार्थ की बोली, कुछ तो समझती फिर भी कुछ सहेजती रिश्तों में, कुछ तो समझती फिर सहेजती रिश्तों में, अंतर्मन की ऊष्मा से खिला सा चेहरा, अंतर्मन की ऊष्मा से खिला सा चेहरा, करुणा अंतर्मन में नैनों में होती वफा की, करुणा अंतर्मन में नैनों में होती वफा की, दिल में मोहब्बत की रोशनी बनावट से परे, दिल में मोहब्बत की रोशनी बनावट से परे, जोश भरी एक प्यार की बदरी छाई जीवन में, जोश भरी एक प्यार की बदरी छाई जीवन में, कितने पड़ाव आते, कितने पड़ाव आते उम्र की इस रेलम पेल में, कितने पड़ाव आते उम्र की इस रेलम पेल में, हंसते गाते रूठते मनाते गुजर जाते पल पल छिन छिन, क्यों मक्कारी आज बेहद सर उठा रही इस दौर में, क्यों मक्कारी आज बेहद सर उठा रही इस दौर में, कुचलना जरूरी धोखेबाजी के छल छंद को आज तो, चापलूसी के बनावटीपन के इस दौर में कागजी फूल, चापलूसी के बनावटीपन के इस दौर में कागजी फूल, हकीकत में सत्य के वफा के मोतियों की है दरकार आज भी, हकीकत में सत्य के वफा के मोतियों की है दरकार आज भी है भले मानुष संस्कार मान इस बिकाने में, कितनी मीठी बोली है अपनायत है इस छोटी काशी में, कितनी मीठी बोली अपनायत है इस छोटी काशी में, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी शौकत उस्मानी गंगाधर जी, पेंटर अथक मूलचंद छत्रनारायण, मुक्ता प्रसाद जी, गोयल जी, मघाराम जी। कहीं आंसू अकेला सा, मेरी अगली कविता है, कहीं आंसू अकेला सा कहीं खुशी का आलम, कहीं आंसू अकेला सा कहीं खुशी का आलम, हमें आज भी क्यों परेशान करता तेरी बेवफाई का गम, हमें आज भी क्यों परेशान करता तेरी बेवफाई का गम, सुर्ख लाल रोशनी में शामिल क्यों गजल की धड़कन, सुर्ख लाल रोशनी में शामिल क्यों गजल की धड़कन, यादें बन क्यों रुलाता क्यों किसी अरमान का मंजर, कहीं मखमल कहीं मलमल कहीं फूलों के गुलदस्ते, कहीं मखमल कहीं मलमल कहीं फूलों के गुलदस्ते, फिर क्या सुंदर ख्वाब दिखलाती तेरी नजरों की तपिश, फिर क्यों सुंदर ख्वाब दिखलाती तेरी नजरों की तपिश, यों मौन क्यों सिमट गया आज घर के ही दायरे में, ये मौन क्यों सिमट गया आज घर के ही दायरे में, क्यों अपना सा ही लगता मेहमान का आना बड़ा सुख कर, क्यों अपना सा ही लगता मेहमान का आना बड़ा सुख कर, किसी लड़की की नजरों में सिसकता सा वो क्षण है, किसी लड़की की नजरों में सिसकता सा वो क्षण है, बरसात की नम बौछारों में दिखता आंगन गीला सा, खिली है रोशनी कुदरत की, खिली है रोशनी कुदरत की, बारिश की हरियाली खुशनुमा, प्रभु की अतीव बराए मेहरबानी है खुशियों की चमक, देख लो कैसे बदल गई आज जमाने भर की नजरें, देख लो कैसे बदल गई आज जमाने भर की नजरें, प्रीति की प्रेम की रीति विचित्र रही उल्फत कहीं खिदमत, प्रीति की प्रेम की रीति विचित्र कहीं उल्फत कहीं खिदमत। अगले मुक्तक कहें, मछलियां एक्वेरियम में तड़पती सी आज भी, मछलियां एक्वेरियम में तड़पती सी आज भी, जिंदगी की सरगम जैसे हो कोई गम की धुन पे, जिंदगी की सरगम जैसे हो कोई गम की धुन पे, दूलसी तपती रेत के धुरों में अजीब मंजर, चढ़ते उतरते दौड़ते गिरते पड़ते वो मस्ती का आलम, कुछ मकानों के पते गलत मिले कुछ मिले ही नहीं, धूप भी जैसे छांव की कैद में हो वक्त की रोशनी सी, कैद है जज्बात तो गम किसी दिल में पिंजरे में पंछी से, प्यास भी अनुति नहीं मिटती किसी

सुराही से। आज कैद में ताले में भगवान भी देखो चमत्कार, आज कैद में ताले में भगवान भी देखो चमत्कार। इंतजार है हर जगह चाहे सिनेमा हो या मंदिर का दर, इंतजार है हर जगह चाहे सिनेमा हो या मंदिर का दर। किशोर आज बाजार है नाजुक शेयर मार्केट का विचित्र, किशोर आज बाजार है नाजुक शेयर मार्केट का विचित्र। कभी सेंसेक्स बढ़ता कभी रुक जाती शेयर धारक की धड़कन, कभी सेंसेक्स बढ़ता तो कभी रुक जाती शेयर धारक की धड़कन। है शहीदों की कुर्बानी अमर सदा शहीद आजम भगत सिंह सी, है शहीदों की कुर्बानी अमर सदा शहीद आजम भगत सिंह की। लाल है खून आज भी वीर सैनिकों की, लाल है खून आज भी वीर सैनिकों की, अनुपम शौर्य की गाथा सुन के।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: और आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

समूह स्वर मंगाया ये देशभक्ति की प्रार्थना सुनो। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल नगर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। ये सुनते हैं सुगम संगीत। आज की कलाकार है इकबाल बानू।

0: सुबह संगीत के कार्यक्रम में आपने सुनी इकबाल बानी को। सारंगी पर संगत कर रहे थे साबरी खान, हारमोनियम पर जाहिद खान और तबले पर रमजान खान। आकाशवाणी बीकानेर का ये धूल मरुचंद है। मैं बज रही हूँ, अब आप सुन रहे हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत 7 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदेश में श्रावण माह का आगाज बारिश के साथ हुआ। अगले एक सप्ताह तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना। और कॉमनवेल्थ खेलों में राजस्थान की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर देश के लिए एक और पदक पक्का किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़ी अन्य अनियमित गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने इस विधेयक के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय हित अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को मजबूत तकनीकी सहायता बनाए रखने, शिकायतों का जल्द निवारण सुनिश्चित करने और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान काउंसलिंग पोर्टल के सुचारू संचालन को सुगम बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए हर संभव सक्रिय उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने काउंसलिंग कार्यक्रम, आईटी अवसंरचना, साइबर सुरक्षा तैयारियों, शिकायत तंत्र निवारण और उम्मीदवारों के लिए सुगम उपायों और सहभागी संस्थानों के साथ

0: क्रियान्वयन का भी आकलन किया। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद पंच गौरव कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 7 जिलों में 14 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है। इन केंद्रों में बारां में लहसुन, चित्तौड़गढ़ में सीताफल, जालौर में अनार, झालावाड़ में संतरा, जयपुर में आंवला, अजमेर में गुलाब और जैसलमेर में खजूर के लिए आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां ग्राइंडिंग, सॉर्टिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। इन केंद्रों पर खाद्य प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बाड़मेर में महिला सुरक्षा संकल्प जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों, अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। पुलिस उप महानिरीक्षक राशि डोगरा ने बताया कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाना और उन्हें अपने अधिकारों तथा उपलब्ध पुलिस सहायता सेवाओं की जानकारी देना है।
1: प्रोग्राम का बेसिक एम यही है कि जो भी कानून है उनसे इनको अवगत कराया जाए, इनके अधिकारों से, जो भी नए कानून में भी इनके लिए प्रावधान दिए गए हैं तो इन बच्चियों से संवाद किया जाए। मैं मानती हूँ कि महिला होने के नाते एक दोहरी दायित्व है हमारा, पुलिस अफसर तो हम हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि ये जो लड़कियां आई हैं ये भविष्य में ये भी माताएं बनेंगी, तो सबसे पहले आज जो बड़ी है वो तो अपने परिवार में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, और जो लड़कियां पढ़ रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, तो मेरा माँ बाप से यही मतलब अपील रहेगी कि इनको और आगे शिक्षा दें और इनको लाइफ में जो भी ये करना चाहती है उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़े।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मॉनसून ने प्रदेश में सावन माह का स्वागत बारिश के साथ किया है। पूर्वी भारत के ऊपर बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र के असर से पूर्वी राजस्थान में सक्रिय मॉनसून से पिछले 24 घंटों में भीलवाड़ा, डीग, अजमेर, धौलपुर, झालावाड़ और नागौर सहित कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। सिरोही में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हनुमानगढ़ में हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहावना हो गया है। सबसे अधिक 117 मिलीमीटर बारिश टोंक के मालपुरा में रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है।
2: पिछले 24 घंटों में

0: भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह के दौरान मेघगर्जन और हल्का सी बिजली के साथ कहीं मध्यम तो कहीं तेज दर्जे की बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट होने की प्रवचन।
1: चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मॉनसून के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये बात स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों की समय पर मरम्मत कराने, आवश्यक दवाइयों और जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मरीजों की संख्या के अनुसार चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की तैनाती करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रोमा सेंटर और फर्स्ट रेफरल यूनिट में आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता एक महीने में सुनिश्चित करने को भी कहा। श्रावण मास के शुभारंभ के साथ आज से प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। इसी के साथ कांवड़ यात्राएं भी शुरू हो गई हैं। हनुमानगढ़, बारां, अजमेर और पाली के विभिन्न शिवालयों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। सवाईमाधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में ध्वजारोहण के साथ श्रावण महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान यहां धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होंगे। महोत्सव के मद्देनजर रेलवे ने सावन के चारों सोमवार को ईसरदा रेलवे स्टेशन पर 6 प्रमुख ट्रेनों का 2-2 मिनट का अस्थायी

में ठहराव करने की घोषणा की है। कॉमनवेल्थ खेलों में राजस्थान की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया है। कोटा की अरुंधति ने ग्लासगो में खेले गए महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से हराया। मुकाबले में अरुंधति ने शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। वे इन खेलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। उनकी इस उपलब्धि पर कोटा में खुशी का माहौल है। अरुंधति

0: शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। वे इन खेलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। उनकी इस उपलब्धि पर कोटा में खुशी का माहौल है। अरुंधति अब 31 जुलाई को सेमीफाइनल में यूके की मुक्केबाज से भिड़ेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत 7 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदेश में सावन माह का आगाज बारिश के साथ हुआ। अगले एक सप्ताह तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना। और कॉमनवेल्थ खेलों में राजस्थान की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर देश के लिए एक और पदक पक्का किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये भी हमारा चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

0: स्वाति शर्मा गौरव जैन ऐसे अतीत की आवाजों में अपने भी लोकगीत सुना। लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मार्चनों से।
1: कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: कार्ड हो हमारे चैनल से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।

साथी लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी बीकानेर के रोहन आलोचना से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए निजे प्रस्तुत है NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। आज आप इसकी 1339वीं कड़ी सुनेंगे।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धुंदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
0: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जाने श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
0: श्रोताओं आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
0: श्रोताओं उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
0: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
0: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया।

0: और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
1: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
0: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
1: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
0: श्रोताओं, आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
1: लब्ध प्रतिष्ठ।
0: इसका अर्थ है
1: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
0: तो श्रोताओं, अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
0: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम, शीर्षक है पहली बूंद।
1: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।
2: नहीं।

0: आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर

0: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पास्टर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
2: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य

0: गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
1: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम नजर आते हैं।
2: हाँ, ठीक कहते हो, तू मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसमें मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
2: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो चलो।
0: पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
4: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
5: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
3: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
0: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
4: वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
4: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
4: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे मिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
6: लुई पाश्चर
7: सर,

0: आपसे एक मदद चाहते हैं।
1: कहें सर।
0: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
1: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
0: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अर्बोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
3: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
2: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
3: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
2: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
3: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
2: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
3: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
2: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
3: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
2: तो फिर उन्होंने क्या किया?
3: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूँ?
0: I am sure, 100%. सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी। हाँ।
2: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें

0: जाग जाग कर बितानी।
1: सर हुँ? सर ये टेलीग्राम।
2: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
1: क्या हुआ सर?
2: देखो टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई है सर।
2: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं,
1: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
2: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: आप
4: वो गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ही परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाज़ियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही मास्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें यह कहते हुए सुना।
5: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने

0: अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते मैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
1: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। आज आपने इसकी 1339वीं कड़ी सुनी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। समय मिलाइए श्रोताओं, सुबह के ठीक 10:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: कौन कही इस फिल्म का ये गीत आपने सुना केके के स्वर में। गीत को लिखा गया अमिताभ वर्मा ने और संगीत प्रीतम का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरुजन से।
1: Let's do it.

0: सुनीता राव अनुमानी कौन सा थीम की आवाज हो।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।

0: किसी वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-220-2233 पर कॉल करें।
2: संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में अंदाज फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत मधु मिश्रा का है।

सुनिधि चौहान और साथियों को गाया गीत आपने सुना। फिल्म का नाम था अनामिका। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत अनु मलिक का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: किसी वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

यादव ने इन साथियों के स्वर में अपना गीत सुना वजीर फिल्म से। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के डोलो मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, तनिष्क बागची के संगीत निर्देशन में शाबिर अहमद का लिखा यह गीत आप सुनेंगे, देव नेगी राजा हसन। ये योहनी सिंह और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है लव यात्री।

0: मर्डर टू, इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सलीम भट्ट की आवाजों में। गीत को लिखा था सईद कादरी ने और संगीत मिथुन का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है।

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये

始め、フィン、メイリー・ジェームス・ティ、セブン・ティン・キンソン、アリソン・タン・カリ・カンク。

हिम्मत अल्लाह हिम्मत

0: यहीं पर।
1: नहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख तो बस समझ जाओ।

0: यही समाप्त होता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कमलिका। लोकसभा के

0: लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित न करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही 8-2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IAS में त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।

0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मुंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात के मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर की 47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महेंद्र गणित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोहसिनी नाकात ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली शिवशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के 2 मरीज चुने से बोल रहे हैं। 12 बजकर के 5 मिनट होने को है।

अवजो पेंजो सिंधी प्रोग्राम सभी बुधनन के नमस्ते खेमन जो प्यार भरे नमस्कार साथियों अद महीने जो आखिरी निस्पत है अद आवा बुधना

असां वेहूं खणी अमन जो पंहिंजो सिंधी प्रोग्राम सभिनी ॿुधंदड़नि खे नमश खेमनि जो प्यार भरियो नमस्कार साथियों अॼु महीने जो आख़िरी निस्बत आहे अॼु अव्हां ॿुधंदा प्रोग्राम आकाशवाणी जा नवे वरी इन तहत असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं हिक ई फनकार प्रोग्राम जे तहत हिकु गीतकार जे बारे में ऐं गॾु ई लुत्फ़ माणींदासीं उन्हनि जे गातल गीतनि जो ऐं गॾु ई चर्चा कंदासीं ख़ासि ॾींहनि ते मैं ॿुधायो साथियों तव्हां सभिनी जो कहिड़ो हाल आहे उमेद आहे तव्हां चाक मज़े में हूंदा भई सावन जी मुंद शुरू थियण वारी आहे चवंदा आहिनि सावन जो महीनो तमामु पवित्र महीनो थींदो आहे इन महीने में भोलेनाथ जी पूजा अर्चना करण सां मनोकामना झटि पूरी थींदी आहे इन जे अलावा जेकी बरसात जी फुहार ईंदी आहे उहा न सिर्फ़ धरती मां खे सावक सां सरोबार कंदी आहे पर असांजो बि तन मन सावक सां भरिजी वेंदो आहे अहिड़े में अगरि पंहिंजनि जो साथ हुजे त हिन मुंद सां प्यार थियणु लाज़मी आहे चवंदा आहिनि पंहिंजी भावनाउनि खे गीतनि ज़रिए सुठे नमूने पेश कयो वञी सघे थो गायन कला जो हिकु अहिड़ो रूप आहे जंहिं में माण्हू पंहिंजे पाण खे सुहिणे रूप में पेश करे थो पाण को बि गीत जॾहिं ॿुधंदा आहियूं उन जे आवाज़ ॿुधी पाण बि भावुक थी वेंदा आहियूं ऐं हुन गीत खे पाण वास्तव में महसूस कंदा आहियूं संगीत मन खे शांती प्रदान कंदो आहे पर हिन संगीत खे असां ताईं पहुचाइण लाइ गायक कलाकारनि जी भूमिका अहम थींदी आहे उन जे आवाज़ में जेकी कशिश हूंदी आहे उहा असांखे हुन गीत में पूरी तरीक़े सां सरोबार करे छॾंदी आहे अहिड़ी हिकु आवाज़ में सतराम वहाणी

सुठे नमूने ॿुधाए सघनि था ऐं समझी सघनि था। सतराम वोरा हिकु महान गायक ऐं हिदायतकार हुआ। हिननि घणेई हिंदी ऐं सिंधी फिल्मुनि जो निर्देशन कयो हो। सतराम वोरा जो जनम सिंध जे सखर इलाइक़े में 23 जून 1949 जे ॾींहुं थियो हो। संदन पिता जो नालो रोहणमल रोहड़ा ऐं माता जो नालो दादन भाई रोहड़ा हो। सतराम वोरा जॾहिं 6-7 महीननि जा हुआ त हिननि जी माउ गुज़ारी हुई ऐं हू जेसि ताईं हुआ तेसि ताईं पंहिंजी ज़िंदगीअ में माउ जे पनाह जी सिक ऐं मोहबत जी नीह जी अहमियत खे महसूस कंदा हुआ।

थी कसम बहार जो हिन गीत जे बोल सां अवां समझी विया हूंदा कि असां कंहिंजे बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियूं। हा साथियो, सतराम रोहरा जंहिंजी आवाज़ में मस्ती ऐं शोखी शामिल आहे, जंहिंजे गातल गीतनि में ऐं बिगाननि में कहिड़ी न ख़ासियत आहे, इहो

सुहने मुश्कवारों में गायक जाती जिंदगी में भी खिल खुशी के घणी तरजीह ॾींदो हो। सतराम वारा हिकु बहुमुखी प्रतिभा जा धनी हुआ। ऐं सिंधी सूफ़ी कलाम, लोक गीतन, हास्य गीतन ऐं प्यार भरे नगमनि जा हिकु मशहूर गायक हुआ। माण्हुनि अॻियां पहिरियों भेरो ॻाइण जो मौक़ो हिननि खे दादा मोती प्रकाश ॾिनो। हिननि खां पोइ हिननि जी मुलाकात गोविंद माली, भगवंती नावाणी, दादा राम पंजवाणी ऐं गोवर्धन भारतीअ सां थी ऐं हिननि जे ॻाइण जे सफ़र जी शुरूआति थी।

गोवर्धन भारतीय सां थे मुलाकात हिननि खे राजस्थान जे संगीत प्रोग्रामनि में छिकी आई पोइ त 17 महीना हिते जे कलाकारनि मसलन कमला केसवाणी ऐं कला हजारिया सां बि घणा गीत गाता संगीत जी महफिल में शामिल थियण वारा

जूनिया प्रेमी चवंदा हुआ। 17 भोरा ए भगवंत नववाणी जे गीतन के बुधण में संगीत प्रेमी जी रात गुजरी वेंदी हुई, पर बुधण वारन जी सिक शांत न थी सकंदी हुई। नागपुर में रिथियल एक प्रोग्राम में जडे दादा राम पंजवाणी जे भाषण जो प्रोग्राम पूरो थियो ए संगीत जी महफिल शुरू थी, त बुधणन जो मेड़ अची मिलियो। इन संगीत जी महफिल के भगवंत नववाणी से गड 17 भोरा पंज आवाज सा सिंगारे हो। संगीत ए कला हुन जे रूह में वसंदी हुई।

साथियों अवां हीअंर ॿुधी रहिया आहियो हिकु फनकार प्रोग्राम जे तहत 17 रहणो खे टिप्स कंपनी संदन आवाज़ में गातल सिंधी गाननि जूं टे कैसेटूं रिलीज़ कयूं आहिनि हिननि सां गॾु HMV ऐं LV पारां बि रिकॉर्ड ठाहिया विया आहिनि पंहिंजी यादि में दीपक आशा जो लिखियलु गीत जीअं मुंहिंजी सिंध माता गोरा पंहिंजी जिंद अॼु बि मशहूरु आहे ऐं महफ़ूज़ आहे हिन गीत जी धुन दादा सतराम रोहिड़ा पाण तयार कराई हुई पहिरियों भेरो ही गीत सतराम रोहिड़ा ऐं भगवंत नारायण जे आवाज़ में गातो वियो ऐं रिकॉर्ड थियो हुननि न रुगो गीत गाता पर सिंधी ऐं हिंदी फिल्मुनि में बतौर हिदायतकार जे रूप में बि कमु कयूं सिंधी फिल्मुनि में झूलेलाल हल त भॼी हलूं शल धीअरनि ॼमन ऐं लाडली शामिल आहिनि ऐं हिंदी फिल्मुनि में शेर डाकू रॉकी मेरा नाम घर की लाज जय संतोषी माँ ऐं नवाब साहिब शामिल आहिनि ऐं जय संतोषी माँ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते सफलता जा रिकॉर्ड तोड़े हुआ पंहिंजे गीतनि ज़रिए सतराम रोहिड़ा पंहिंजी महफ़िल में एतिरो त नशो पखेड़े छॾंदा हुआ जो माण्हू पाण खे झूमण सां रोके न सघंदा हुआ

विक्रम रोवा जी शादी 7 जून 1964 जे दी थी इनन जी पत्नी जो नालो कांता रोड़ा पेंजी पति जे जीवन सफर सगद इनन जे संगीत सफर में भी साथ निभाए रही हुई पेंजी जिंदगी के 17 रोड़ा घने रूपन में गुजारो ए जीत पिण हासिल कयो हर दिल अजीज ए खेलो कलाकार 17 रोड़ा पेंजी मिठड़ी आवाज सा सिंधी संगीत जो गाट मथे करे रहे हो ए 18 जुलाई 2024 में 85 वर्ष की उम्र में खराब तबियत सबब इन दुनिया के अलविदा चई उन रूहानी दुनिया में हलिया गया पर पेंजे गीतन जरिए अज भी असांजे जीवन में संगीत की खुशबू पखेरे रहा है अहड़े गीतकार के असांजो शत शत नमन ए साथियों अज 30 जुलाई ते अज जो दिन मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस इन जो मकसद जागरूकता वधान पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करण ए अपराध के रोकण लाए एक सालानो वैश्विक कार्यक्रम है जेको जागरूकता वधान लाए मल्हायो वेंदो है इन जे अलावा सिंधी शख्सियत सदा हयात हीरो शेवकानी जी वर्सी है हीरो शेवकानी एक लघु कथाकार थियण सा गड सिंधी भाषा जा एक प्रमुख आलोचक भी हुआ लघु कथाओं की एक किताब ए साहित्यिक आलोचना जी 3 किताबों इन जे खाते में आ है इनन के ब प्रतिष्ठित इनामन सा भी नवाजो वियो हो पहरियो एक साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार ए बियो सिंधी साहित्य जे मुख्य योगदान लाए गौरव पुरस्कार 30 जुलाई 2021 में इनन दुनिया सा चालानो कयो दिव्य आत्मा के असा जो शत शत नमन ए वंदन साथियों घड़ी इशारो करे रही है कि असा जे हलण जो वक्त थी रहयो आ असा जे हन सिंधी प्रोग्राम जो वक्त इते ही पूरो तो थे वरी अवहा सा गजानी थींदी इंगड़ा आरतवार ते देह जो बारे लगी 10 मिनटन ते खणी नई पेशकश तेज तई नमीशा खेमनानी के दिन मोकल नमस्कार।

श्रेया घोषाल और निखिल पॉल के स्वर में फिल्म बर्फी से भी आपने ये सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है अरिजीत सिंह की और फिल्म का नाम है कबीर सिंह।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी।

मुख्य तमाशों से अलका याग्निक और अरिजीत के स्वर में अपनी अपनी गीत सुनो। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है एक विलेन, स्वर है मोहम्मद।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के बिरला मनोरंजन चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है सुनते हैं जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ हूँ। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे।

0: 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ जितेंद्र सिंह की विधेयक को विचार पारित करने और संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई है, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सके। लोकसभा ने कल ये विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी ठहराए गए अपराधियों की संपत्तियों की जब्ती जैसे कठोर प्रावधान हैं। मामलों के जल्द निपटारे के लिए हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 8 जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया है। इन अदालतों की स्थापना फलौदी, डीडवाना, कुचामन, खैरथल तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली बहरोड और सलूमबर में की जाएगी। स्थायी लोक अदालतों के गठन से आमजनों को विवादों के त्वरित और किफायती समाधान की सुविधा मिलेगी। इन अदालतों में आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागों में खाली पद जल्द भरने और जनसेवा से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन से जुड़े कामों में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, डांग विकास कार्यक्रम, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना, अटल ज्ञान केंद्र और पीएम कुसुम योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। सलूंबर के गांवडा पाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीर बाला कालीबाई राजकीय जनजातीय बालिका छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं और युवतियों को मोबाइल और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। उन्हें सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने, ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी और पासवर्ड साझा नहीं करने की सलाह दी गई। साथ ही साइबर ठगी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने की जानकारी भी दी गई। राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा के ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 अगस्त से 13 अगस्त तक जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर रेंज मुख्यालयों पर आयोजित होगी। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में सावन के साथ ही बारिश का दौर फिर से तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। सर्वाधिक 6-6 सेंटीमीटर वर्षा प्रतापगढ़ जिले के अरनोड और प्रतापगढ़ में दर्ज की गई। इसके अलावा शहाबाद और सवाईमाधोपुर तहसील में 4-4 सेंटीमीटर जबकि बांसवाड़ा के घाटोल और भूंगड़ा में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। श्रीगंगानगर तहसील में 5 और पीलीबंगा में 4 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में एक साथ स्थान पर भारी बरसात दर्ज की गई है। आगामी दिनों में कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हो चुके हैं। आरंभ होता है कार्यक्रम घर आंगन। आज की प्रस्तुति दे रही है खुशबू हर्ष और सुरभि बोहरा।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सगली बहनों ने सुरभि बोहरा और मैं खुशबू हर्षा घना घना राम राम सा। मंडी में जब हरक समावे, चेहरे पर मुस्कान सुहावे, दूरा भागे दुखड़ा सारा, सगला लादे सुखरा धारा, चित्रा कोण खिल खिल जावे, बाता में चाव अनोखो आवे, नाचे मंडू झूमे गावे, धींग धानी हरक मनावे, साची खुशी तो मन माही, दूजा में उनमें ढूंढू नाही, थारी हर पल राजी रेवनी, आही खुशीरी साची कानी।
1: वाह सुरभि बहन, थे कविता तो घनी चोखी ही सुनाई के आपने जी की खुशी हुए नी बा आपरे मन सु हुआ करे है और खुशी है जी की कोई बिकाऊ चीज को नहीं है, आ तो अपने मनडारी एक रीज है, एक चाव है। जब अपनो बीच हेत और प्रेम रो रंग हुए नहीं तो हर पल उत्सव बन जावे है। और यहाँ भी सुरभि बहन देखो कि काल तो गुरु पूर्णिमा थी तो मंदिर रामायण घर रामायण कितनी रौनक ही, हर आदमी रो मन है लुगाई रो मन है जिको एकदम उल्लास से भरो थो। और काल सु ही शुरुआत होगी है सावन रे महीने री, तो पूरे महीने महादेव जी री है जी की पूजा है, पाठ है, सेवा है, बा खूब जी का लोग बाग है बे मन सुकरसी। और मारी बहना है जी की तीज त्योहार मथे खूब माथा रे माय ने मेहंदी लगायड़ी और उन्हें इतनी फुटरी फुटरी दिखसी की बेरे देख लिया पर मन है जी को बहुत खुश हो जावे।
0: बिल्कुल खुशबू बहन, और तो बहुत खुशी रो मौको हुए। सही बात है कि बहन खुशी कोई बड़ी चीज में कोनी लागे, जियां थे बता रही हो ना कि हाथा में मेहंदी लागोड़ी हुए, हाथा में चूड़ियां पहरोड़ी हुए, तो वे बात चीज भी अपने बहुत ज्यादा खुशी दे। रंग बिरंगा परिधान अपा पहरा लहरिया पहरा सावन है और कई तरीके री चूड़ी ओटा, तो आ खुशी कोई बड़ी चीज में कोनी, कोई छोटी चीज अपा
1: छोटी छोटी बात सुबह अपा खुश
0: हो सका, तो वह कटे भी ढूंढी जा सके, किसी भी कोने में लाद सके। अभी छोटो सो अपा एक उदाहरण लेवा कि चाय री चुस्की पीवा सवेरे सवेरे तो भी मैं अपा ने खुशी लाग जावे, और जब बारिश हुए तो पहली बूंद री महक में या आप जिसे दोस्तों बात करने में भी माने तो खुशी लाग जावे।
1: सही बात है सुरभि बहन, और बार सु हसण में और राजी होने में को नहीं हुए बल्कि मन री शांति और अंदरूनी सुख में होया करे है। मारवाड़ी में एक कहावती की संतोष में ही पहलो सुख है, जिको आपरे पास है तो उनमें ही राजी रहनो और ऊपर वाले ने अपना धन्यवाद देनो कि भाई मैं तो बहुत है जिका राजी हाँ। और छोटी छोटी बात सु खुशी अपने खुद में लेनी पड़े है कि घर मायने कोई छोटो सी आप उत्सव मना ला, आज आप देखा नहीं कि आप घर में गमले में अगर आप एक पौधो भी लगावाने तो अपने बिना भी खुशी हो जाया करे है,
0: बिना देख कर खुशी।
1: हाँ तो देखो बहना आ तो हुई कि अपनी खुशी अपने वास्ते क्या मायने रखे, और छोटी छोटी बात सु अपन क्या खुश हो सका। हाँ तो इन्हें साथ ही बहना ने सुना हुआ एक चोखो सो गीतड़ लो।

करी समंदर सामने कभी दम गाया मंगाया रे भला कबड़ा मंगाया रे भले कर।

Nine.

0: फुल्ली स्टाइल गया है मुंबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए।
1: डाउनलोड ओटीटी ऐप।

0: व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर।

0: बेनिया हर साल 30 जुलाई में पूरी दुनिया में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जावे है। आ दिन मिलखरी खरीद बेच शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठावन और लोगों ने जागरूक करण रो एक मोटो मौको हिया करे है। मानव तस्करी एडो घिनौना अपराध है जो रामायण ने मिलखरी आजादी मान सम्मान और 12 हक है जिका छीन लिया जावे। बेनिया भारत में मानव तस्करी ने रोकन और एडा अपराध करण वाला ने सजा देवन सारू घना सख्त कानून बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता और आईपीसीडी धारा रे अनुसार मानव तस्करी करण वाला ने भारी जुर्माना और 7 साल सु नेर उम्र केदरी सजारो प्रावधान है। पॉस्को एक्ट रे तहत जिका टापरा सगे अगर एडो अपराध करे या ब्यारो शोषण करे या बयाने सख्त से सख्त सजा देना जो अपराध जी का हो जाया करे तो बयाने प्रावधान रखे गए हैं। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जबरदस्ती या बिना मजदूरी काम करावन माथे रोक लगावे और ऐड़ा लोगों ने छुड़ावन में मदद करे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और हर जिला में और पुलिस री खास टीम बनाई जावे जो मानव तस्करी माथे सीधी और तुरंत कार्यवाही किया करे है।
1: देखो बहना की अपने कदी भी या लागे या एवरी घटना भी खबर मिले या कोई मुसीबत में दिखे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर माथे फोन करना जरूरी हुए। कोई भी आपात स्थिति है या पुलिस री मदद सारू महिलाओं री सुरक्षा और सहायता सारू राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या अपराध री सूचना देवन सारू नंबर है तो जिन पर आप अपराध री सूचना दे सका हा और बखत रेवता थका भी अपराध में रोक भी सका हा। आप सिखना ने हमें सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। बिना जागरूकता ही बचाव है और बाही बड़ी सुरक्षा है क्योंकि कई बार लोग बात नौकरी पढ़ाई और मोटी कमाई रो लालच दे बुरे भाड़ा लोग में फंसा देवे तो बिना खुद रे आस पास या कठी भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि हुए तो बिना मायने चुप है जिको बिल्कुल भी नहीं रहना बिना जरूर सूचना देनी आ सूचना केरो जीवन बचा सके है।
0: बिल्कुल खुशबू बहन जागरूकता ही अपराध रो मोटो इलाज हुआ करे। मानव

0: तस्करीने रोकणू सामाजिक जिम्मेदारी रो काम है। जो अपन अपने आप अगर कोई कोई खबर आ रही है आपरे पास में या कोई संदिग्ध काम दिख रहे हो तो या कोई टाबर मुसीबत में दिख रहे हो तो बिना डरे हेल्पलाइन माथे आप फोन भी कर सका। अपनी छोटी सी कोशिश भी जी की है कोई जो जीवन है बचा सके। जे कोई अनजान आदमी आपरे गाँव या मोहल्ले में या टाबरिया में जी को है की पैसा रो लोभ दे रही है या नौकरी रो लालच दे रही हो तो तुरंत पुलिस ने अपने खबर कर देनी चाहिए। नौकरी सारो अगर बाहर जाना हो तो पहले आपकी जी की कंपनी है ठेकेदार है बीरो पूरे अपने जांच पड़ताल कर देनी चाहिए। इनके सागे सागे टाबरा ने भी कही जागरूक होना बहुत जरूरी हुआ करे।
1: साची बात है सुभी बहन की आज रो वक्त हिस्सो है कि भाई आपा भी है जिका जागरूक रहा और घर जो छोटा छोटा टाबर है नीया ने भी आपा सचेत करा की भाई बारे कोई भी हिस्सो हुए थोने कोई भी लालच देवे कोई टॉफी रो है कोई घुमाने रो है तो भी लालच में बिल्कुल भी अर्थ जब कठे भी खेले में भी जाओ कठे भी जाओ तो घर आना ने सूचना दे जाओ।
0: बिल्कुल
1: तो आतो हुई देखो बैना जानकारी तो बैना ने सुनावा एक चोखो सो की कर लो।

0: खैर को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है।

0: पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है। रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सूभीबेन आजकल रो बखत घणो ही माड़ो है किनी पर भी भरोसो कोनी कर सका हा और आज आपा ए विषय पर ही बात कराला कि आपारा टाबर कोई भी अजनबी सु कितना सावधान रहे बिन सु कोई भी बातचीत नहीं करे और बिया ने आपा घर में ही आ शिक्षा देवा कि भाई बारे जार किसु भी बातचीत कोनी करनी है कोई कई भी कहवे तो बिहारी बात है जी की सुननी कोनी है और मुसीबत आवे तो आपा आपातकालीन नंबर पर फोन कर सका हा।
1: बिल्कुल साची बात है खुशबू बहन कि भरोसा किन पर भी नहीं करना क्योंकि

0: अबार जी को टाइम नहीं, वो भरोसे रखो नहीं। तो अखबार में, टीवी में, मोबाइल में रोज एक तरीके की अपा खबर देखा, खबर सुना, रेडियो पर भी सुना, तो इसी खबर सुन काल जो जो नहीं वो बैठ ही जावे। अपना टाबरा बारे जा रहा कितना सुरक्षित है, टाबरा रे कई सुरक्षा है या टाबर कई चार घबरा तो को नहीं रिया, कोई टाबरा ने उठाड़ तो को नहीं ले जा रहे, कोई टाबर ने गलत संगत तो को नहीं दे रही, तो इस पर अपने ध्यान तो रखना चीज है। टाबर ट्यूशन जावे, स्कूल जावे, बारे खेलने जावे, तो यानी बड़ी चिंता रहे और एक मारे मन में चिंता होनी स्वाभाविक है। पर सभी बहन चिंता करनी सु तो की को नहीं हुए भाई, टाबर स्कूल भी जासी, ट्यूशन भी जासी और जितने बारे नहीं जासी तो बिहार विकास किया हो सी। इन सारू टाबरा ने इसी बात सिखानी की बे अजनबी सु बात नहीं करे, बिहार दियोड़ी कोई भी चीज नहीं लेवे, भरोसो किसी पर भी नहीं करे, शारीरिक और मानसिक रूप सु बे इतना मजबूत हुए कि किसी भी परिस्थिति रो डट प्रार सामनो कर सके, बिल्कुल भी घबरावे नहीं। बिल्कुल, बारे भी जब जावे तो घर रे सदस्य ने बता जावे, आपरे घर जी का बड़ा वडेरा है या आपरी माँ ने टाबर कह जावे कि मैं आपरे भाले हूँ मिलने जा रहे हूँ या कठे पढ़ने जा रहे हूँ, तो टाबर ने पूरी सूचना आपरे मायता ने दे देनी चीज है। साथ ही साथ अपने ध्यान रखनी चीज है की अनजाने रास्ते से नहीं जानी चीज है। टाबर ने कही हुए नहीं की दो टाबर मिल जावे बच्चे कहवे की मैं जी को नया रास्ता जानू, तो एक दूसरे टाबर ने और ले जावे, जल्दी पहुंच जा सा, या बैठे कहीं आइसक्रीम रो ठेलो खड़े हुए तो बैठे पूछ जावा। तो अपने ध्यान देना चीज है की वे टावर है वे अनजान रास्ते पर ना जावे, क्योंकि अनजान रास्ते पर कई तरीके का डर वो सामना टावरा नहीं कर सके। और सबसे बड़ी बात आ है कि इंटरनेट पर भी अजनबी सु दोस्ती नहीं करनी। कई बार हुआ है कि टावर खेल रहे मायने में, या फिर कहीं हुआ है कि कई चिका आया करे ऐप वगैरह भी, पर अजनबी से दोस्ती करने लगा करे, तो आप रो नाम, घर रो पतो, स्कूल रो नाम और फोटो और साथ ही साथ मोबाइल नंबर किने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक खतरे रो संकेत हुआ करे। याद रख जो बना कि सुरक्षा ही सब बड़ी समझदारी है, समझदार और सतर्क रहने ही आज रे वक्त रे सब मोटी जरूरत है। अगर कभी कोई परेशानी हो भी जावे तो घबराने नहीं, समझदारी सु काम लेनो। बिना बालपण है नी जी को जीवन रो सब चोखो बकत होया करे, खेल कूद मौज मस्ती और हर चिंता सु दूर, पण बेना कभी कभी ई खुशियों पर भी ग्रहण लाग जावे। और अबार तो कही है कि भाई धनी लुगई हुए जिका दोनों ही काम काजी हुए, तो और जरूरी है कि थोड़ो बखत निकाल टाबरा घर में बैठनो। या नहीं कि टाबर मोबाइल पर कहीं भी देख रहे है, बारे जा रहे है और आपा एकदम निस्फिक्र है कि भाई आपा आपा रो काम कर रहे है, टाबर आप रो काम कर रहे है, थोड़ो सो बखत टाबरा खाने भी बैठनो और टाबरा सो मित्रवत व्यवहार करनो, ताकि बे बियारे साथ है कोई परेशानी हुए, कोई भी समस्या हुए तो बे अपने बिना बेहिचक बता सके है। बिया नहीं है लागे कि बिना बात बताऊं तो मारे गारा सो मने डांट कोनी पड़े है, तो थोड़ो समय तो टाबरा वास्ते निकालने ही चाहिए, क्योंकि और जी की हुए नहीं उम्र हुए नहीं बा ही देखो में संगत रो भी ध्यान रखनो चाहिए कि भाई मेरी किसी संगत है, अगर वो मोबाइल भी नेर बैठे तो देखा कि मोबाइल में कई देख रहे हैं, तो अपने थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी है। और इतनी भी नहीं कि भाई टाबर है जिसको अपने कोई बात बताने सु भी हिचक जावे कि भाई आप बात बता सु तो मना तो घरे डांट पड़ सी, तो अभी नहीं होना चाहिए। तो अपने तो टाबरा साथे व्यवहार है जिसको बहुत सोच समझ करना चाहिए है। इन सारू टाबरा ने भी आपरे माँ बाप रा नंबर है, घरे बाकी सदस्यों रा फोन नंबर है, वे भी याद होना चाहिए, और कोई अड़ोसी पड़ोसी है तो बिरा भी नंबर याद होना चाहिए, और भीड़ साथे साथे आपातकालीन नंबर भी याद होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो बिना लेट चला आपने गीत संगीत री दुनिया में सुनेला और चोखो सो गीत लो।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारु चैनल की प्रस्तुति।
1: बेना डिजिटल क्रांति रोसर आज सिर्फ सहरा तक ही सीमित कोने है, बल्कि राजस्थान का छोटा छोटा गांव भी इनमें पीछे होने है। डिजिटल भारत री लहर आज माने गांव रो हुलियो ही बदल दियो है। पहला गांव में कोई संदेशो भेजने हो तो या दूर बैठे कोई खबर लेनी होती तो डाकिये री बाट जोड़नी पड़ती, पर आज गांव रे ताबराम मेर बड़े बड़े रारे हाथ में स्मार्टफोन ले रही है। इंटरनेट की मदद सो आज गांव रो टाबर टाबर दुनिया रे कुना कुना जुड़ जुड़ है। खेता में काम करता करता किसान जी का भी मौसम की जानकारी ले सके, मंडी रा मोल भाव मोबाइल पर ही देख लेवे है। पहले गांव में टाबरा ने पढ़ाई री सामग्री या कोचिंग की कमी झेलनी पड़ती, आज कहीं है घर बैठा टाबर पढ़ाई करे, इंटरनेट के जरिए भी कर सके और बेकठे कोचिंग अगर जाना चाहे तो बीरो पता भी इंटरनेट से पता कर सके। तो इरी मदद से गांव या टावर घर बैठिया ही डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर लिया है। गांव के स्कूल में भी स्मार्ट कक्षा और कंप्यूटर आ जान सु टाबरा ना पढ़ाई में मन लागे है। और आजकल कहीं की गांव वाले लोगों ने रुपयों लेन देन करण सारू या पेंशन रे काम वास्ते लंबी लंबी लाइनों में खड़ो रहने रो भी जरूरत कोनी है, क्योंकि रुपया रो भुगतान इंटरनेट रे जरिए हो जाया करे। सरकारी योजना वाली जानकारी भी इसु ही मिल जाया करे है और ई योजना वासु भारत रे गांवारो विकास बहुत ही बढ़िया तरीके सु भी हो रियो है। आज रे बखत रे मायने किराना री दुकान सु ले सब्जी री दुकान तक रुपयों रो भुगतान ऑनलाइन हो जाया करे है। डिजिटल गांव में लोग बैंक रा काम ऑनलाइन करे है, बिजली पानी रो बिल भी मोबाइल सु ही भरे है। और इसु दो फायदा है कि एक तो जिको काम है वो आसानी से हो जाए और दूसरों है जो को बखत भी बचे है तो भी बखत रे मायने आपा कोई दूसरा काम भी कर सका हाँ। खुशबूबन डिजिटल होते गांव सु समय और पैसा दोनों ही बचत हुए है। सरकारी कामों में पारदर्शिता बढ़े है, इंटरनेट रे माध्यम से रोजगार और व्यवसाय रा नया मौका भी खोज सका हाँ। अपन डिजिटल सुविधा रा सही और सुरक्षित उपयोग करना चाहिए, साइबर ठगी से बचना चाहिए और मजबूत पासवर्ड बना रखना चाहिए। आपरा पासवर्ड जिका बे किन्नी भी बताना नहीं चाहिए, जिसे सावधानी अगर अपन रख लानी तो सुनने पर सुहागो हो जाया करे। तो अपन ये सुविधा रो उपयोग सावधानी से कर सका। डिजिटल रोहन सु गांव रा युवा गांव री हस्तकला बंधेज और मारवाड़ी संस्कृति री चीजा ने इंटरनेट रे माध्यम सु पूरे देश में बेच लिया है। और डिजिटल क्रांति मारे गांव में तरक्की री ऊंचाई पर ले जा रही है और आज मारो गांव अब आधुनिकता और संस्कृति रो सुनहरो संगम बन रियो है। तो अतु हुई बेना जानकारी डिजिटल क्रांति री, इरे साथे ही बेना ने मनोरंजन खातो सुनावा एक चोखो सो गीतड़ लो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं तनिष्का। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट। What is the definition of service provider? क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको जा रहा हूं। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई व्हाटएवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज्ड बाई द पब्लिक examination authority for the

0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अंकित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
1: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, ये ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजह बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे newzonearea ऐप और हमारी वेबसाइट www.newzonearea.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात के मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।

0: 10,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।

0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वाही कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावण मेला शुरू हो गया है।
3: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले, इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं मनीष रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार

0: Buenas y personas que yo arreglé. ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज के डमरुमा धीमे जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के चार शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ओंटारियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप बहादुर गामित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकास ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरलेश शंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल।

0: मीडियम 215.05 मीटर यानी
1: 1395 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

शराब से। किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में अपने अपने गीत सुने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का

19.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारे प्रथम प्रसारण के कार्यक्रम अभी ही समाप्त होते हैं। 4 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संदेश टू सोल्जर्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तो अभी के लिए इजाजत दीजिए।

मीटर से 15.95 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 4 बजने को हम प्रसारण में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सबसे पहले दिल्ली केंद्र से प्रसारित संदेश टू सोल्जर्स।

आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपने कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उसे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशन जिनके

0: नेशन है TIIFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहाँ सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा गुरु के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता। मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूँ।

0: पूरा विश्वास है और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं और मैं यही कह सकता हूं आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आप में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहां से ये कारवा शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहां आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
0: ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि मुझे याद है कि लाइक जो हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन है जो मुझे एसएसबी में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
1: अब निश्चित मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस है, जो बेटे हाफ है, वो बहुत ही खूबसूरत है और आपकी मुस्कुराहट इस बात को महसूस कर सकती हूँ।
0: मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है, तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशन पे जाते हैं, वॉर्स पे जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शीज दबाई वो भी एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
0: देखिये ये जो आपने बोला ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा लड़ता पड़कता आ गया और उसने फिर घूमा और अपनी मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है मम्मी कोई अंकल आए हैं। अब सोचिए कि वो दैट लेडी जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को, अपने घर को संभालती रही, मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है। It is little more than बहुत difficult. इतना ज्यादा मुश्किल का मामला है। ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास जो सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाती है, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, मेरे को सेलिब्रेशन। अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है।
1: क्या बात है, क्या बात है। जितने भी आर्मी वाइफ आर्मी इनकी वाइफ इस वक्त में सुन रही है ना, इट इज अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात उन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, खासतौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर है और घर से दूर है, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुंच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुंच जाते बेटे ने जिस तरह से आपको देखा, तो उसके भी बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ, आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन है तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए आपने बहुत देखा होगा कि एक शहर, उस शहर, उस राज्य बहुत ज्यादा ऐसे उधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं।
0: मुझे लगता है कि फौजियों के बीच में ये बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है। अच्छा। हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं। बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते

0: इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार शुरू कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ में बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे। दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं।
1: क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं। तो केवी स्कूल से आप पढ़ रही हैं और केवी स्कूल की जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हो, वहाँ के टीचर्स हो, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ। यहाँ पर ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल खत्म होते होते कि जाना है तो आर्म फोर्सेज में जाना है, ऐसा कुछ था उन्होंने?
0: मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे खराब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट डन एज फार एज जहां तक मेरे लिए बात है। भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन नहीं हूं,

0: होता है, अलग ही तरीके का एटमोसफेयर, चाहे वहां की बिल्डिंग हो, वहां के बच्चे हो, वहां के टीचर्स हो, तो सबकी यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ। यहाँ पर ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल खत्म होते होते कि जाना है तो आर्म फोर्सेज में जाना है, ऐसा कुछ था हमने?
1: मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे खराब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट डन एज फार एज मैं, जहां तक मेरे लिए बात है भाई, आप मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन नहीं हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं। अब वेल मुझे मैं इसमें काफी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं था।
0: वाह क्या बात है, यही आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, तो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं।
1: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना, दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे। पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था।
0: अच्छा।
1: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है।
1: आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं, क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गई।
0: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त है ना जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती हूँ। और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है। हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजहार

0: बेसेफ स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुश है तांग खा कर क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिनकी किसी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं। कर्नल साहब मैसेज यही आ रहे हैं कि आप ही खुश मिजाज से सुन करना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे ये कहानी जरूर।
1: तो मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूम चल रहा होता है।
0: अच्छा,
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूम बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब नहीं आ जाए, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हटके खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको परना बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं जरूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज्यादातर घरों में क्योंकि यही था तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी टोक देते थे क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है अगर मैं अपने याद करूं तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे पर मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज्यादा पसंद नहीं था क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया जो मुझे लगता है आज भी कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि यस वो खुद भी नहीं पीते थे तो वो भी एक बड़ा वो था। वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए और जहां तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की तो वेल कैंटोनमेंट्स में स्कूल्स में

0: सोशल समझने की क्षमता या सोशल समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
1: मतलब मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी।
0: अच्छा,
1: बढ़ चढ़ के
0: क्या?
1: जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोलकर निकर पहनकर बारिश में भीगूं और एंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया।
0: वाह।
1: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे। अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूँ। एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब आपकी बनियान नहीं होगी।
0: अच्छा।
1: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था, यार बनियान उतारने को मिल रहा है। सो मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी। मैंने अगर ऑपरेशन शैतानी भी बोलो तो उसमें मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ।
0: अच्छा।
1: कि आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए।
0: मुझे आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहीं कहीं ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया। बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

0: ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਪਰਗਟ ਅਮਰਫਰ ਅਗਰ ਉਨਕੇ ਕੈਨਵਸ ਕੋ ਦੇਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹਿਸ ਕੈਨਵਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਆਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰੋ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਆਜ ਕਾ ਯੇ ਸ਼ੋ ਆਜ ਕਾ ਯੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਿਸੀ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬਤਾਊਂ ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇਂ ਨਾ ਗੋਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਕੀ ਸੋਚ ਆਪਕਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਜੀਣੇ ਕਾ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹਾ ਹੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਯੇ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਸੇ ਲੋਕ ਡਰਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਂਗੇ ਜਬ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਆਤੀ ਹੋਗੀ ਜਬ ਫੌਜ ਮੇਂ ਰਹੇ ਜਬ ਕਮਾਂਡ ਕੀਆ ਜਬ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਕੀਆ ਜਬ ਫੈਸਲੇ ਲੀਏ तो माहौल इस वक्त कुछ और रहा होगा निश्चित है
1: नहीं देखिए सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं मैं मान लूंगा इस बात को लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम किस दिशा में जाएंगे और मालूम है कि वो दिशा गलत है तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस हम गलत जा रहे हैं हमें मालूम है कि यहां रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं लेकिन मैं उसमें आगे हूं तुम्हारे साथ इसलिए मेरे को कभी नहीं नजर आया कि कहीं किसी ने आंख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर तो सिर्फ इधर ही होगा उधर का मामला हो नहीं सकता क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं वो तू करेगा सो दैट इज द वे जो लाइफ है और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है आप में और आपके जवान में फर्क नहीं है फर्क है तो सिर्फ कंधे का है और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूं कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं निक्कर पहने हैं जूते पहने हैं इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूं जिसको कहते हैं कंधे से कंधा नहीं छाती से छाती टकराती है और वहां हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है हमें यूनिफॉर्म पहनी है यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी सलूट मारना है सलूट सही मारना ही पड़ेगा इसके लिए कहीं कोई दूत आया नहीं है उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी मेरे तरीके से टुकाई होगी मेरा सीधा सीधा तरीका है काम करने का मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है मुझे आज तक उसमें यह नजर नहीं आया कि किसी ने यह कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया पता नहीं आज किसको लपेटेगा सो दैट इज अ सिकनेस सिकनेस को अगर सिकनेस

0: देखना है तो यस इट वॉज सिकनेस, बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इंडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा।
1: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया, सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
0: मैं पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे, क्योंकि देखिए ये जब 85, 86, 87 ये वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया, 2800 रुपए मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी। ये तो मेरी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपए महीना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं, बोला आपके जमा होते रहेंगे।
1: अच्छा।
0: आप नहीं तो खर्च कर दोगे, बिना खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। सो माय फादर वाज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपए थी, मतलब 2800 से भी कम। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूं ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को हुई।
1: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी है। तो 1987 में आप ऊटी गए, ऊटी चेन्नई, जहां से आपने ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय किए गए?
0: ये मेरी बदकिस्मती है कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ।
1: अच्छा।
0: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा। लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइट्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो उस समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे, और आज मैं कह सकता हूं तब से लेकर अब तक कभी कोई राइट नहीं हुआ मेरठ में। तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था, और वहीं से पंजाब की वॉप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला। तो मेरे को आज भी याद है हम धानीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहां थे, जहां पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी, क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था। तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन, और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूं। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया। मैंने कहा अगर यहां तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा, लेकिन मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो व्हाई नॉट कार्बाइन। सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड, मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर। सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट। हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें।
1: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उसमें, जब जैसे जैसे ऑपरेशन होते होंगे और जिन जिन ऑपरेशन का हिस्सा बनते गए, तो जैसे आप खुद एक डेस्टिनी लवर है, किस तरह की आपकी किस्मत आपको आर्म फोर्सेस ले आई, उस तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशन होते होंगे और जिस जिस ऑपरेशन पे आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज्यादा।
0: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी।
1: अच्छा।
0: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ, मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर जीओसी कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूं, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी कंपनी इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं। सो गौरवान्वित मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए, हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे।
1: वाह क्या बात है, ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है और मेरे ही मेरे फैसले से काया पलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग, आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है।

0: बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूँ। मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूँ मुझे। और ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूँ या मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं? क्योंकि हर ऑपरेशन, मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशन का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर।
0: मुझे, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए जेएमके रहेगा श्रीनगर
1: जी,
0: क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएमके के सो कॉल्ड कंट्रोल एजेंसी में था और मेरी वहां शादी हो गई। सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट भाई श्रीनगर में शादी हो गई।
1: वाह क्या बात है। तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको
0: कनेक्ट सूत्र में बांधा? ये ना एक्चुअली हमारे फौज में जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं, तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वहीं पर से भी बने थे। उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और पूरा करके सामने रख दी लड़की। अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गॉट मैरिड।
1: क्या बात है,
0: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई, और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है, आज तक वो आपको मिल गई। अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में बार बार जिक्र करना चाहते हैं।

0: हाथ देखते हैं। कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में। और हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई, जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा, बट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी। बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकल कर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है। जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम मटालिक साइड में थे, लेकिन वहां से और यहां से कॉमनैलिटी ये आई कि दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा,
0: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी। कोई जवान कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर। वो जो स्पिरिट थी मुझे लगता है वो उन सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूँ, 15,000-18,000 फीट पर जहां ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहां भाग रहे थे, आप वहां दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। दिस वाज अ इम्पॉसिबल लड़ाई, एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूं 528 लोग उस दिन मारे गए। मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन

0: में 527 ऑफिशियल है, 528 में आपके सामने बैठा है। हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए, मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार होना चाहिए।
1: शब्द नहीं है, मैं शब्द हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जो इस वक्त सुन रहे होंगे। वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद। किस मिट्टी के बने हैं आप, ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेना को देना चाहूंगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर अपनी माँ के आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहाँ पर ठीक भी नहीं है, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। I could see कर्नल शैलेंद्र सिंह have wet eyes। किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ आपकी नम आंखें इस बात का सबूत है, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचा जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूँ देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं अगर आप नहीं तो हम नहीं। एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। एक रात को मौका मिला, आपको मौका दिया गया, जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म वो पोशाक पहनी है, चौड़ा आपने सीमा चौड़ा कर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन पलों को?
0: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ।
1: अभी तक
0: वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है।
1: वाह।
0: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है। और जब आप कहती है मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मुझे गर्व की बात है। इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। और जहां तक बात है रिलिव, अब मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि I have to relive, मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूँ। मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी। As far as I am concerned, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है।
1: आपने आज निश्चित कर दिया आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर के इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसे कि मैंने कहा किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं, कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमें

0: हम जानते हैं कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उस उन सभी सैनिकों के लिए, सभी ऑफिसर्स के लिए उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
1: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजन लेना, और आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सोल। दैट मींस जो ओपी ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बनाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बना रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा। तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उसे एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भूपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर। और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो ओपी ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, बट उस घन एरिया के अंदर मैं अदमरा हो जाता हूं कि ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर। अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्चून्स एंड गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव। ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है। उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए।
0: क्या बात है।
1: So, ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए, कि उसे मालूम है कि आप फायर कहां कर रहे हो, अपने ओन ट्रिप्स पर कर रहे हो, और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
0: बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं, और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से, और कहीं ना कहीं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतह हासिल करवाते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं, और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं।

ज्यादा पसंदीदा जिंदादिली पसंदीदा थाने से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल भवानी का। संदेश भेजने वाले में और भी बहुत सारे दोस्त हैं और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार नहीं बरसाते रहे। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय

0: आया सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें क्योंकि यही जिंदादिली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
1: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है। और आपको शत शत प्रणाम, शत शत

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजनावकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों, युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और प्रश्न पत्र लीक को कतई बर्दाश्त नहीं करने के मोदी सरकार के संकल्प को दोहराया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को लाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं और प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी नहीं होंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो और जॉर्जिया के राजदूत बख्तम जाओशविली से मुलाकात की। बैठक में परिकल्पित लोकतांत्रिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पेंडुम 2026 के विजेता प्रवीणा मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्र...

आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बख्तर टॉर्नमेंट जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाश अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और कई आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटकों से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन लीग ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई है। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। नीरज पांचवें, रोहित और यशवीर नौवें और दसवें स्थान पर रहे। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभिषेक बीकानेर का ये दूरदर्शन चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही हैं सुमन बिश्नोई और पूजा रंगा।

0: दोस्तों कहते हैं जिंदगी की सबसे अच्छी बात है कि वो हर सुबह हमें एक नया मौका देती है, कुछ नया करने का, नया सीखने का, अगर चाहे तो अपनी कुछ आदतों को बदलने का भी। नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी युवा साथी सुमन बिश्नोई।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा रंगा। आप सभी दोस्तों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुमन, एक बात पूछूं?
0: अरे आज स्टार्टिंग में सवाल।
1: दोस्तों अगर मैं कहूँ कि हमारे घर में एक डॉक्टर भी रहता है, एक रसोईया भी और एक दवा की दुकान भी है, तो क्या तुम यकीन करोगी?
0: पूजा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। अगर मैं एक बार के लिए मान भी लूँ तो बताओ ये कैसे संभव है?
1: क्योंकि वो रहता है हमारी अपनी रसोई में।
0: अच्छा, क्या बात कही तुमने। सचमुच हमारी रसोई सिर्फ भूख मिटाने की जगह नहीं बल्कि अच्छी सेहत की शुरुआत भी वहीं से होती है।
1: बिल्कुल, लेकिन सुमन अफसोस की बात यह है कि आजकल रसोई में बनने वाले खाने से ज्यादा लोग बाहर मिलने वाला खाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं।
0: और फिर वही लोग कहते हैं आज थकान लग रही है, काम में मन नहीं लगा, डॉक्टर ने कहा है थोड़ा ध्यान रखिए।
1: मतलब दोस्तों गलती हमारी है और हम शिकायत शरीर से करते हैं।
0: पूजा, तुमने कभी गौर किया है, पहले जब माँ खाना परोसती थी तो कहती थी थोड़ी दाल और ले लो, थोड़ा सलाद भी खा लो, दही खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो। उस समय लगता था कि जबरदस्ती कितना खाना खिला रहे हैं।
1: लेकिन सुनो, मुझे आज समझ आता है कि वो जबरदस्ती नहीं थी, हमारी सेहत की सबसे बड़ी सुरक्षा थी।
0: बिल्कुल, और शायद इसीलिए आज हमने ऐसा टॉपिक चुना है जो हर घर, हर उम्र और हर इंसान से जुड़ा है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संतुलित आहार और स्वास्थ्य की।
0: पर पूजा, सबसे पहले हमारे दोस्तों को बताओ संतुलित आहार आखिर होता क्या है?
1: अगर आसान भाषा में कहें तो संतुलित आहार यानी ऐसा भोजन जिसमें शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में मिले, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब सही क्वांटिटी में हो। इसमें सिर्फ पेट भरना ही पर्याप्त नहीं होता, शरीर का पोषण भी उतना ही जरूरी होता है।
0: यानी हमारी थाली में दाल हो,

0: हो, हरी सब्जियां हो, फल, दूध या दही, और सबसे जरूरी पर्याप्त पानी।
1: बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि स्वस्थ रहने के लिए महंगे खाने की जरूरत नहीं होती। हमारी पारंपरिक भारतीय थाली अपने आप में संतुलित आहार का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
0: दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमें रोज फल, सब्जियां, नमक और अतिरिक्त चीनी कम लेनी चाहिए, तला भुना और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए, रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना या फिजिकल एक्टिविटीज करना।
1: और दोस्तों, एक बात आजकल हम सबको सुननी चाहिए, डाइटिंग और स्वस्थ भोजन दोनों एक जैसी बात नहीं है। कई लोग खाना कम करके खुद को हेल्थी समझ लेते हैं,
0: बिल्कुल,
1: जबकि जरूरत हमें कम खाने की नहीं, सही खाने की होती है।
0: लेकिन पूजा, आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन कोई नई डाइट ट्रेंड कर रही होती है। कोई कहता है सिर्फ फल खाइए, कोई कहता है कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो कोई कहता है रात का खाना ही मत खाइए। ऐसे में लोग समझे तो आखिर क्या समझे?
1: सुमन, दरअसल सबसे बड़ी गलती ही हमसे यहाँ होती है कि हम दूसरों की थाली को देखकर अपनी थाली तय कर लेते हैं, जबकि हर व्यक्ति की उम्र, काम करने का तरीका, शरीर की जरूरतें और स्वास्थ्य अलग अलग होता है। इसीलिए किसी की देखा देखी नहीं बल्कि समझदारी से भोजन चुनना जरूरी है।
0: यानी अगर किसी को कोई डाइट सूट कर रही है तो जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी सही हो।
1: बिल्कुल, और सच कहूं तो हमारी दादी नानी की रसोई में ऐसी कई चीजें थी जिन्हें आज पूरी दुनिया सुपर फूड कह रही है, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, चना, मूंग, ये सब हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं।
0: सही कहा तुमने, और अच्छी बात यह है कि ये स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है और आसानी से हमारे लिए अवेलेबल भी है।
1: इसीलिए दोस्तों, संतुलित आहार का मतलब महंगा भोजन नहीं बल्कि सही भोजन है।
0: बिल्कुल पूजा, मुझे लगता है कि आज की ओर एक और आदत है जो हमारी सेहत पर चुपचाप असर डाल रही है।
1: अच्छा, कौन सी?
0: खाना खाते समय मोबाइल का यूज।
1: बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है कि रील्स देखते देखते खाना खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि खाया क्या था।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन सच कहूं तो ये कि जब हम आराम से बैठकर बिना किसी स्क्रीन के भोजन करते हैं तो भोजन का स्वाद भी महसूस होता है और पाचन भी बेहतर होता है।
0: एक और जरूरी बात, हम सब जानते हैं कि पानी जरूरी है, लेकिन कितना पानी जरूरी है ये नहीं जानते और हम उसे नजरअंदाज भी कर देते हैं।
1: कई बार हमारा शरीर थका हुआ महसूस करता है, सिर भारी लगता है या ध्यान नहीं लगता, और हमें लगता है कि शायद हम बहुत काम कर लिया है, जबकि हमें डिहाइड्रेशन हो रही होती है, हमारे शरीर में पानी की कमी होती है।
0: यानी छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती है। समय पर भोजन, पर्याप्त पानी, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज और भरपूर नींद, यही है स्वस्थ जीवन की असली नींव।
1: तो दोस्तों, इस पूरी बातचीत का सार बस इतना सा है कि अपनी थाली से दोस्ती कीजिए, अपने शरीर की बातें सुनिए और अपनी सेहत को कल पर मत टालिए,
0: क्योंकि स्वस्थ रहना कोई मुश्किल काम नहीं, बस रोज के छोटे छोटे सही फैसलों का एक रिजल्ट है।
1: किसी ने क्या खूब कहा सुमन, धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, समय बीत जाए तो उसे सीखा जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य खो जाए तो बाकी सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ अधूरा रह जाता है।
0: तो दोस्तों, चलिए आज एक वादा खुद से करते हैं, संतुलित आहार को अपनाएंगे, नियमित एक्सरसाइज करेंगे, जितना अमाउंट जरूरी हो उतना पानी पिएंगे, स्वस्थ जीवन को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाएंगे।
1: क्योंकि दोस्तों, जब तन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो और जीवन में संतुलित हो तो हर दिन अपने आप में खास बन जाएगा और आप खुद से कहेंगे, गजब का है ये दिन।

0: दोस्तों अब वक्त है आपके अपने पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का और हम पूछेंगे आपसे दो प्रश्न।
1: तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इलेक्ट्रिक बोट रूपांतरण पायलट परियोजना शुरू की गई।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न है आपके लिए, 27 जुलाई को CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था।
1: दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने प्रश्नों को अच्छे से सुन लिया है, समझ लिया है, तो देरी किस बात की, दौड़ाइए अपने दिमाग का घोड़ा और इंतजार कीजिए थोड़ा।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: इतने कहाँ से?
3: एक लाइन भेजा अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिली है।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे, RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सुमन, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजों को सबसे ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। सुबह अपनी मर्जी से घर से निकलना, अपने दोस्तों से मिलना, अपने सपनों के बारे में सोचना, अपने पसंद के फैसले लेना, ये सब हमें इतना नॉर्मल लगता है कि हम कभी रुक कर इनके बारे में सोचते ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने। शायद इसीलिए जब हम आजादी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता देश की आजादी का ख्याल। लेकिन एक आजादी और भी है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी, अपने फैसले खुद लेने की आजादी, अपने सम्मान के साथ जीने की आजादी। और सच कहूं दोस्तों तो इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं है।
8: बिल्कुल, लेकिन अफसोस तब होता है जब यही आजादी किसी से छीन ली जाती है। सोचिए, जब कोई इंसान अपने फैसले खुद ना ले सके, अपनी मर्जी से कहीं आ जा ना सके, अपने सपनों को ही ना जी सके, तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती होगी। सच कहूं ये सोचकर ही मन भारी हो जाता है।
7: और यही एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। शायद इसी वजह से आज के दिन पूरी दुनिया में यानी 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग समझ सके कि इंसान कोई सामान नहीं, हर व्यक्ति का अपना सम्मान है, अपनी पहचान है और अपनी ही आजादी है।
8: लेकिन सुमन, मुझे लगता है कि आज भी बहुत से लोग मानव तस्करी का सही मतलब नहीं जानते। कई लोगों को लगता है इसका मतलब सिर्फ किसी का अपहरण कर लेना है या किसी इंसान को बेच देना है।
7: जी नहीं, यही सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी है दोस्तों। मानव तस्करी का मतलब है कि धोखे, लालच, दबाव या जबरदस्ती से किसी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में करना, उसका शोषण करना, कई बार अच्छी नौकरी, ज्यादा सैलरी या फॉरेन कंट्रीज भेजने के लिए हमें हमारे फ्यूचर के लिए हमें सपने दिखाए जाते हैं और लोगों को फंसाया जाता है। बाद में उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाता है और उनका अलग अलग तरीकों से शोषण किया जाता है।
8: यानी शुरुआत सपनों से होती है लेकिन अंत दर्द में बदल जाता है। सुमन, और सबसे दुखद बात यह है कि इसके शिकार सिर्फ महिलाएं या बच्चे ही नहीं होते, युवा, पुरुष, मजदूर, कोई भी इसका शिकार बन सकता है। अपराधी सिर्फ इंसान को नहीं फंसाते, वो उसकी मजबूरी, उसके भरोसे और उसके सपनों का फायदा उठाते हैं।
7: दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट में जितने हमें अवसर मिलते हैं उतनी ही सावधानी भी मांगते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति बिना किसी प्रोसेस के हमें अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब और फॉरेन भेजने का वादा कर रहा है तो हमें रुककर जरूर सोचना चाहिए।
8: किसी भी ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है, अपने परिवार से बात करना, संस्था की सच्चाई को जानना और बिना जांच पड़ताल के कोई दस्तावेज को साझा न करना। ये छोटी छोटी सी सावधानियां हमें खतरे से बचा सकती है।
7: और सिर्फ अपनी ही सुरक्षा नहीं, अगर हमारे आसपास कोई बच्चा स्कूल की जगह जबरन काम पर जाता हुआ दिखाई दे, कोई व्यक्ति डर

0: सहमा सहमा लगे या हमें कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी नजर आए तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि समय पर हमें संबंधित प्रशासन या पुलिस को सूचना देनी चाहिए। यही एक जागरूक नागरिक की पहचान है।
1: दोस्तों, कई बार हमारी छोटी सी सतर्कता किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, किसी का बचपन वापस ला सकती है, किसी का भविष्य बना सकती है। इस मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस पर हम सिर्फ एक दिवस ही नहीं मनाएंगे, बल्कि जिम्मेदारी भी निभाए, खुद जागरूक रहे, अपने परिवार और दोस्तों को जागरूक करे और किसी भी झूठे लालच या संदिग्ध गतिविधि से हमेशा सतर्क रहे।
0: क्योंकि जब समाज जागरूक होता है तब अपराधियों के इरादे कमजोर पड़ने लगते हैं और यही छोटी छोटी जागरूकताएं मिलकर एक सुरक्षित और बेहतरीन समाज की नींव रखता है।
1: दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, और जब बात हो इंसान की आजादी, सम्मान और अधिकार की, तो इससे बेहतर संदेश शायद ही कोई हो।

0: आज हम बात करेंगे एक ऐसे संस्थान की जिसने देश के गांवों, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका नाम है नाबार्ड।
1: बिल्कुल पूजा, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मेन एम फार्मिंग और विलेज डेवलपमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट करना और गांवों में विकास की गति को तेज करना है।
0: सही कहा सुमन, नाबार्ड सीधे किसानों को ऋण नहीं देता बल्कि ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से उन्हें सहायता उपलब्ध कराता है। इससे खेती, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और छोटे ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।
1: दोस्तों, आज के समय में नाबार्ड केवल फार्मिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, यह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वाटर कंजर्वेशन, डिजिटल बैंकिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे एरियाज में भी वर्क कर रहा है।
0: जी हाँ, खास बात यह है कि नाबार्ड गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए भी कई योजनाओं का संचालन करता है। इससे ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।
1: दोस्तों, यदि गांव मजबूत होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। नाबार्ड इसी सोच के साथ किसानों और ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।
0: दोस्तों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं या कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नाबार्ड की योजनाओं की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि सही जानकारी आपके भविष्य को नई उड़ान दे सकती है। अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन उसे पहचान कर आगे बढ़ने का साहस हमें खुद जुटाना पड़ता है। इसीलिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए, अपने हुनर पर भरोसा रखिए, क्योंकि मंजिल उन्हें मिलती है जो कदम आगे बढ़ाने से डरते नहीं हैं।

0: शहर को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये

0: दोस्तों आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने काम या मोबाइल की दुनिया में इतने बिजी हो जाते हैं कि प्रकृति से हमारा जुड़ाव कम होने लगा है। लेकिन हर दिन कुछ समय पेड़ों की छांव में बैठना, सुबह की ताजी हवा में टहलना, पक्षियों की चहचहाट सुनना या डूबते सूरज को निहारना मन को नई ऊर्जा और सुकून दे सकता है।
1: दोस्तों जीवन की सबसे अनमोल दौलत वो है जिसे हम ना ही खरीद सकते हैं और ना ही किसी से उधार ले सकते हैं। यह सुकून अक्सर हमें पृथ्वी की गोद में ही मिलता है।
0: दोस्तों जब सुबह पक्षियों की मधुर आवाज सुनते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। ये एक तरह की नेचुरल थेरेपी है जो बिना किसी आवाज के हमें मानसिक शांति देती है।
1: साइंटिफिक रिसर्च भी यही कहती है कि नेचर के बीच कुछ समय बिताने से हमारा स्ट्रेस है वो कम हो जाता है।
0: प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें बहुत कुछ सिखाते भी है। पेड़ बिना किसी सद्भाव के सभी को छाया देते हैं, नदियां बहती रहती है और पर्वत हमें दृढ़ता का संदेश देते हैं।
1: लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि हम आधुनिक विकास की दौड़ में नेचर को लगातार हार्म कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, पानी के जितने भी सोर्सेज है उनको पॉल्यूट कर रहे हैं और ये हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है।
0: इसीलिए हमें छोटी छोटी आदतें अपनानी होगी कि हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाएं, पानी की बचत करें, प्लास्टिक का कम यूज करें और अपने परिवार के साथ सप्ताह में कुछ समय प्रकृति के बीच जरूर बिताएं। बच्चों को भी प्रकृति से जोड़ना हमारी ही जिम्मेदारी है।
1: दोस्तों हमेशा याद रखिए, नेचर खाली हमारी रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा साथी है। जब हम उसके करीब जाते हैं तो हमें जीवन की सादगी, सुंदरता और संतुलन का एहसास होता है।

0: दोस्तों, कभी आपने सोचा होगा कि बचपन की गर्मियों और आज की गर्मियों में कितना डिफरेंस आ गया है। पहले जहाँ पेड़ की हवा सुकून देती थी, आज वही तेज धूप और बढ़ता टेम्परेचर हमें परेशान कर रहा है।
1: बिल्कुल सुमन, मौसम का ये बदलता मिजाज कि बादल आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता। इसके पीछे प्रकृति और मानव गतिविधियों से जुड़ी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे समझना आज हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो गया है।
0: तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि धरती का तापमान आखिर क्यों बढ़ रहा है इतना और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
1: दोस्तों, धरती का तापमान बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। आसान भाषा में समझाए तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है और उसे गर्म करती है। पृथ्वी इस गर्मी का कुछ हिस्सा वापस अंतरिक्ष की ओर भेजती है, लेकिन वातावरण में मौजूद कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इस एनर्जी को रोक लेती है इसकी प्रक्रिया, और इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
0: दैट मीन्स दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कीप्स द अर्थ्स टेम्परेचर फिट फॉर लाइफ। लेकिन दोस्तों, जब इन गैसों का अमाउंट रिक्वायरमेंट से अधिक बढ़ जाता है तभी हमारे वही चिंता की बात का कारण बनता है।
1: बिल्कुल सुमन, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, वाहनों का प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों का इतना अत्यधिक उपयोग वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ा रहा है और इसका परिणाम ही है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज।
0: इसके कारण मौसम का असंतुलन, भीषण गर्मी, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और ग्लेशियरों का पिघलना जैसी समस्याएं हमें तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है।
1: लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, बिजली और ईंधन की बचत करें,

0: रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएं और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें।
1: बिल्कुल पूजा, क्योंकि प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये बिना कुछ कहे हमें जीना सिखाती है।
0: बस हमें जरूरत है तो उसके रंगों को महसूस करने की और इसी अनुपम छटा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की। आइए दोस्तों, प्रकृति की इस अद्भुत दुनिया का एहसास करते हैं एक गीत के साथ।

0: दोस्तों, हमने कार्यक्रम के अंत में पूछे थे आपसे कार्यक्रम की स्टार्टिंग में पूछे थे आपसे दो प्रश्न और अब वक्त है उनके सही जवाब जानने का। हमारा पहला प्रश्न था आपके लिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इलेक्ट्रिक बोर्ड रूपांतरण पायलट परियोजना शुरू की गई है, और इसका सही जवाब है
1: वाराणसी।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था आपके लिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने 27 जुलाई 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था?
1: इसका सही जवाब है 87वां स्थापना दिवस।

0: दोस्तों बारी है रोजगार सूचना की। आज की रोजगार सूचना हमारे उन साथियों के लिए है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या संगठन इसरो में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।
1: दोस्तों इसरो ने अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि UDC, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर सहित 244 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।
0: आवेदनकर्ताओं को बता दिए कि मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अगस्त 2026 है।
1: इसकी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अधिक जानकारी के लिए आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.isro यानी कि isro.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: आवेदन करने वाले सभी आवेदनकर्ताओं को हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों अब दीजिए अनुमति आपकी दोस्त पूजा रंगा
1: और मैं सुमन बिश्नोई। नमस्कार।

जी और साथ ही सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारू चैनल है। शुरू में ये सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

इसी समय में शाम 6:05 बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत शाम 7 बजे से। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे सामूहिक चर्चा सुरंगी ऋतु आई मारे देश विषय पर, साथ ही सुनेंगे कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारियां और लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे मुक्ता जैन और राम स्वरूप विष्णु।

सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 7:45 बजे से। रात 7:15 बजे हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:30 बजे से।

फिल्म संगीत आपने सुनेंगे रात्रि 9:15 से और रात 9:30 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। रात 10 बजे दिल्ली से रिले होगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग।

0: आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारु चैनल है। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई समय गवाए घोषणा की है कि किसी भी छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पांडव जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े

0: अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी ली। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटक से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माही और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: चैनल है मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोता भाई सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: को अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था लोफर। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए

0: मणिपुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मणिपुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: मन का महिमा पवन करे शोर।
1: सावन का महीना पवन करे शोर।
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
2: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
2: हाँ जी।

जीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था मिलन। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से सुन रहे हैं।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम स्वर्ग से सुंदर, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले के गए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर शाम के 6:30 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर से चले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में कल से राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन। देश विदेश के न्यायविद, विधि विशेषज्ञ और नीति निर्माता जुटेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए बीमा कराने की आखिरी तारीख 16 अगस्त तक बढ़ी। देश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल, श्रेणी 1 और 2 में आईटीआर भरने का कल अंतिम दिन। और सावन के पवित्र महीने के आगमन के साथ ही शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान शुरू, भक्तों में खासा उत्साह। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेंगे। शांति, मध्यस्थता और कानून का शासन विषय पर होने वाले इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के न्यायविद, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि इस वैश्विक न्याय कुंभ CPMC के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सम्मेलन में कई सत्र होंगे। इसमें वैश्विक स्तर पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, मध्यस्थता की भूमिका और कानून के शासन को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। इस सम्मेलन के समापन पर साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। इससे किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि योजना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2026-2027 के लिए 4 बीमा कंपनियों का चयन किया है। ये विभिन्न जिलों में किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध करवाएगी। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, नजदीकी बैंक, सहकारी समिति, कॉमन सर्विस सेंटर और अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थानों के जरिए अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों के लिए प्रीमियम दरें रियायती रखी गई हैं। खाद्यान्न, दलहन और तिलहन खरीफ फसलों पर किसानों को केवल 2% प्रीमियम देना होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज कोटा पहुंचे। राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। स्वस्थ और शिक्षित महिला, सशक्त राष्ट्र विषय पर 2 दिन की इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि महिला सशक्तिकरण से ही देश मजबूत बनेगा। उन्होंने महिला स्वास्थ्य की दिशा में भी समग्र दृष्टिकोण से काम करने की जरूरत पर बल दिया। राज्यपाल ने जाखोड़ा स्थित श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लिया। श्री बागड़े ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी ली। उन्होंने किसानों के साथ प्राकृतिक खेती को लेकर चर्चा भी की। राज्यपाल ने किसानों को खेती के नए तरीके, शेडनेट, पॉली हाउस का उपयोग कर सब्जियां उगाने की सलाह दी।
2: नए तरीके से खेती करने का अभी समय आ गया, शेडनेट और कुछ है तो पॉली हाउस है। हर जो जैविक खेती से करते हैं या अपना गोबर खाद से जो जमीन करते हैं, पिकाते हैं, उसकी जो जमीन होती है, भूमि होती है, वो बहुत मुलायम होती है और सभी पीक के लिए वो मुलायम खेती रहना चाहिए। और जमीन में ही

0: भारत बनाने के लिए उसमें ही उसकी ताकत है। अभी देखो अपने यहाँ जो रासायनिक खाद डालते हैं।
1: कुचामन सिटी के सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कुछ मरीजों की आंखों में संक्रमण का मामला सामने आया है। इनमें से 5 मरीजों को तुरंत जयपुर के SMS अस्पताल लाया गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि विशेषज्ञों की निगरानी में इनका इलाज किया जा रहा है।
2: 7 पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुचामन में, एक सिंपल ऑपरेशन होता है अपने मोतिया का जिसको कहते हैं कैटरेक्ट का, 7 का ऑपरेशन हुआ और इनके अंदर कल जो प्रॉब्लम आ गया 7 में, दो तो अजमेर रेफर हो गए, 5 यहाँ आए हैं। 5 में से 2 का ऑपरेशन ऑलरेडी हो गया है और बाकी का चल रहा है। अभी डॉक्टर्स बेस्ट केयर ले रहे हैं और हमारी जो पूरी डिपार्टमेंट की टीम है, हमारे 3 सीनियर डॉक्टर्स और उनके साथ टेक्निकल जो है और जो ड्रग्स वाले जो टेस्ट करने वाले हैं वो भी सब कुचामन के लिए रवाना हो गए हैं। और अभी ये ऑपरेशन का क्या रिजल्ट रहता है, 5ों का क्या रिजल्ट रहता है और वहाँ क्या पाया जाता है, वो एक बारी इन्वेस्टिगेटिव टीम जाएगी, उसके बाद ही हम कुछ जवाब दे पाएंगे।
1: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मिट्टी के उपजाऊपन और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 2,12,000 किसानों को जोड़कर 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राज्य में अब तक 2,380 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नवंबर 2024 में प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की गई। इसके लिए जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट भी स्थापित किए जा रहे हैं। ये मिशन खेती के साथ ही किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और विपणन की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले 91% किसानों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, वहीं उत्पादन लागत में भी कमी आई है। इससे प्राकृतिक खेती स्वस्थ कृषि व्यवस्था का आधार बन रही है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 और कर निर्धारण वर्ष 2026-2027 के लिए देश भर में अब तक 5,02,00,000 से ज्यादा ITR फाइल की जा चुकी है। इसमें से 2,33,00,000 से अधिक प्रोसेस हो चुकी है। राजस्थान में अब तक व्यक्तिक श्रेणी में 6,92,000 से ज्यादा ITR फाइल की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अनुसार श्रेणी 1 और 2 में ITR भरने का कल आखिरी दिन है। वहीं श्रेणी 3 और 4 के लिए 31 अगस्त तक ITR फाइल की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने 20 जुलाई को घायल हुए प्रदर्शनकारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने ये निर्देश दिए। संसद के मॉनसून सत्र के 9वें दिन आज लोकसभा ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन मन गण का अपमान करने या गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके लिए 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। वहीं राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर भारी हंगामे के बीच चर्चा जारी रही। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन में कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा, इसे लेकर सदन में शोर शराबा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर सफल समुद्री अभियान पूरी करने वाली महिलाओं की टीम से मुलाकात की। अभियान में तीनों सेनाओं की 9 महिला अधिकारी शामिल रही, जिन्होंने 314 दिन की यात्रा कर दुनिया का चक्कर लगाया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने अभियान की सराहना करते हुए इसे नारी शक्ति और तीनों सेनाओं के शानदार तालमेल का उदाहरण बताया।

0: सावन के पवित्र महीने के आगमन के साथ ही प्रदेश भर में आज से धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रावण मास को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और महादेव को जल दूध पंचामृत के साथ अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही बिल्व पत्र भी चढ़ाए जा रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के शिव घोष और जयकारों के साथ सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सावन महीने के पहले दिन आज राजराजेश्वरी मंदिर में भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। संत शिरोमणि रविदास की जयंती के उपलक्ष में प्रदेश भर में सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा रहा है। इस अवसर पर निकाली जा रही कलश यात्रा आज उत्तर प्रदेश से भरतपुर के ऊंचा नगला पहुंची। यात्रा का स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बारवा ने कहा कि संत रविदास ने जाति, धर्म और वर्ग का भेद मिटाकर मानव सेवा का रास्ता दिखाया। उनके विचार समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है।
1: उनके क्या विचार थे ऐसे समाज का निर्माण करने की, जिस सोच को आज और उसी सोच के ऊपर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जब लिख रहे थे, जब भी इनकी सोच का वर्णन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, उसी सोच को आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचाएंगे, नए युवाओं के बीच में पहुंचाएंगे। नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए निश्चित रूप से उसमें संस्कार, संस्कृति और एक मानव प्रेम की भावना जन जन तक पहुंचाएंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में कल से राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन। देश विदेश के न्यायविद, विधि विशेषज्ञ और नीति निर्माता जुटेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए बीमा कराने की आखिरी तारीख 16 अगस्त तक बढ़ी। देश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल, श्रेणी 1 और 2 में आईटीआर भरने का कल अंतिम दिन। और सावन के पवित्र महीने के आगमन के साथ ही शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान शुरू, भक्तों में खासा उत्साह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल एक दिन के दौरे पर भरतपुर आए। उन्होंने वैर तहसील के खेडली गुर्जर गांव में सैनिक बालिका विद्यालय का शिलान्यास किया और लगभग 940 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए, साथ ही उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया और मिशन पढ़ो अभियान का शुभारम्भ करते हुए विद्यार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 40 लाख विद्यार्थियों के खाते में 250 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने भुसावर कृषि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आधुनिक कृषि तकनीकों, अनुसंधान, स्टार्टअप और डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों से मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों के उपयोग की अपील की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बयाना के कारवारी गांव में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, प्रशासन और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं से शिक्षा संस्कारों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान का आह्वान किया। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 UCC के संबंध में संभागीय आयुक्त कार्यालय में जनसुनवाई और विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर भरतपुर

0: सहकारिता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर भरतपुर, डीग और धौलपुर की उत्कृष्ट ग्राम सेवा सहकारी समितियों, प्रगतिशील किसानों तथा सहकारी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने पर बल दिया। भरतपुर के बीडीए ऑडिटोरियम में बीते दिनों मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नव चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और रोजगार उत्सव किट वितरित की गई। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। रूपवास में डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में युवाओं और उद्यमियों को स्वरोजगार, उद्योग स्थापना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन के लंबित कामों का निस्तारण किया गया। प्रभारी सचिव आनंदी ने नदबई क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण कर योजनाओं की समीक्षा की तथा मॉनसून के दौरान जलभराव और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के निर्देश दिए। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने खाद बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्टॉक विक्रय व्यवस्था और रिकॉर्ड की जांच करते हुए किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में न्यायिक अधिकारी विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, कानूनी अधिकारों और जिम्मेदार नागरिक बनने की जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने लग्जरी और स्लीपर बसों का संयुक्त निरीक्षण किया तथा नियमों का उल्लंघन करने वाली 8 बसों के विरुद्ध कार्रवाई की। महारानी श्री जया महाविद्यालय परिसर में मियावाकी पद्धति से पौधरोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के 15,000 से अधिक पौधे लगाए गए। अधिकारियों ने इसे पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। कारगिल विजय दिवस पर लोहागढ़ स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, जयपुर में कल राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन शुरू हुआ। देश प्रदेश रा न्यायविद, कानून रा जानकार और नीतियां बनावन वाला विचार करेला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा तहत खरीफ 2026 सारू बीमा करावन री आखिरी तारीख 16 अगस्त ताई बधाई ची। देश में हाल ताई 5 करोड़ बत्ती इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करी ची। आईटीआर 1 और 2 दाखिल करन रो काल आखरी दिन। और सावन री शुरुआत सा गई शिव मिंद्रा में धार्मिक अनुष्ठान सरूफिया। समाचारों सा गए मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। जयपुर में काल राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन शुरू हुआ। 3 दिन रा इन सम्मेलन रो उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेला। शांति मध्यस्थता और कानून का शासन मुद्दा माथे रख्या जावन वाला इन सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशा रा न्यायविद, कानून रा जानकार, नीतियां बनावन वाला और दूजा नुमाइंदा शामिल हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा सदस्य सचिव हरिओम अत्री बतायो के सम्मेलन रे दौरान भेमन वाला न्यारा न्यारा सत्र माए दुनिया माए झगड़ा टंटारा शांति निपटारा मध्यस्थ री भूमिका और कानून रा राज ने मजबूत बनावन रे बारे माए विचार करियो जावेला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा तहत खरीफ 2026 सारू साखा नो बीमो करावन री आखिरी तारीख बधार 16 अगस्त करती रिची है। पहली आखिरी तारीख 31 जुलाई तय करी ची ही। इनो किसानों ने साखानों बीमो करावन सारू बत्तो भगत मिल सकेला। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल बतायो का योजना सारू राज्य सरकार चालू माली साल में 4 बीमा कंपनियां चुनी है।

0: किसान, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, नजदीकी बैंक, सहकारी समिति, कॉमन सर्विस सेंटर या दूजा अधिकृत वित्तीय संस्था में नजरिए शाखा में बीमो करा सके हैं। वे बताया कि योजना रा तहत किसानों में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन रे शाखा में बीमा सारू केवल 2% प्रीमियम देना होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय री ओर राखी जी राष्ट्रीय कार्यशाला रो उद्घाटन कीनो। स्वस्थ और शिक्षित महिला सशक्त राष्ट्र मुद्दा माथे राखी जा रही 2 दिन री ई कार्यशाला रा उद्घाटन सत्र में श्री बागड़े कहो के महिलाओं ने मजबूत बनावनी देश मजबूत बनेला। राज्यपाल जाखोड़ा में श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र रो जायजो लीनो। वह जैविक खेती ने बढ़ावा देवन सारू केंद्र जी ओर करी जा रही कोशिशों ने जानकारी लीनी और किसानों सागे प्राकृतिक खेती जुड़ी चर्चा कीनी। राज्यपाल किसानों ने खेती बाड़ी रा नुआ तरीका शेड नेट और पॉली हाउस काम लेर तरकारियों री उपज लेवन सारू ही कहो।
1: नए तरीके से खेती करने का अभी समय आ गया, उसके मेट है और कुछ है तो पॉली हाउस है। हर जो जैविक खेती से करते या अपना गोबर खाद से जो जमीन करते पिकाते उसकी जो जमीन होती है भूमि होती है वो बहुत मुलायम होती है और सभी पीक के लिए वो मुलायम खेती रहना चाहिए और जमीन में ही उसका खाद बनाने के लिए उसमें ही उसकी ताकत है।
0: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रातेत काम में राजस्थान ने अगाड़ी राज्य में भेड़ो है। मिट्टी रा उपजाऊपन और टिकाऊ खेती बाड़ी ने बढ़ावा देवन सारू राज्य सरकार 2,12,000 किसानों ने जोड़ 1,00,000 हेक्टेयर हल्का में प्राकृतिक खेती ने बढ़ावा देवन सारू काम कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रे तहत राज्य में हाल ताई 2380 क्लस्टर बनाई गया है जो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश पाछे तीजी थोड़ माथे है। रासायनिक खाद माथे निर्भरता कम करण, मिट्टी री सेहत माए सुधार और किसाना री आमदनी बढ़ावन रा मकसद नवंबर 2024 माए प्राकृतिक खेती मिशन री शुरुआत करी जी ही। इस अरु जोधपुर, कोटा और उदयपुर माए ऑर्गेनिक फूड मार्केट ही खोली गया है। ओ मिशन खेती सागे किसाना ने सिखावन, प्रमाणन और विपणन रो सुबितुई मुहैया करावे है। नीति आयोग री रपट रे मुजब प्राकृतिक खेती अपनावन वाला 91% किसाना री उपज माए बढ़ोतरी गई है और उपज लेवन रा खर्च माए कमी आई है। समाचार कक्षो सलेहा गाजी।
0: कुचामन सिटी में सरकारी अस्पताल में आंख रा मोतिया बंद रा ऑपरेशन पाछे कुछ मरीजों ने आंखें में संक्रमण रो मामलो सामने आयो है। आम आयु 5 मरीजों ने तुरंत जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल लाई चिया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह की अवसर बतायो के डॉक्टर ने निगरानी में मानो इलाज चल रियो है।
3: 7 पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुचामन में एक सिंपल ऑपरेशन होता है अपने मोतिया का जिसको कहते हैं कैटरेक्ट का, 7 का ऑपरेशन हुआ और इनके अंदर कल जो प्रॉब्लम आ गया 7 में, दो तो अजमेर रेफर हो गए, 5 यहाँ आए हैं। 5 में से 2 का ऑपरेशन ऑलरेडी हो गया है और बाकी का चल रहा है। अभी डॉक्टर्स बेस्ट केयर ले रहे हैं। हमारी जो पूरी डिपार्टमेंट की टीम है, हमारे 3 सीनियर डॉक्टर्स और उनके साथ टेक्निकल जो है और जो ड्रग्स वाले जो टेस्ट करने वाले हैं वो भी सब कुचामन के लिए रवाना हो गए हैं। और अभी ये ऑपरेशन का क्या रिजल्ट रहता है, 5ों का क्या रिजल्ट रहता है और वहाँ क्या पाया जाता है वो एक बारी इन्वेस्टिगेटिव टीम जाएगी, उसके बाद ही हम कुछ जवाब दे पाएंगे।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। माली साल 2025-26 और कर निर्धारण साल 2026-27 सरो देश भर में हाल ताई 5 करोड़ उमबत्ता रिटर्न दाखिल करी चिया है, जहां मायो 2,33,00,000 उमबत्ती ने प्रोसेस करती रिची है। राजस्थान में हाल ताई व्यक्तिक श्रेणी रा तहत 6,92,000 उमबत्ती आईटीआर फाइल करी ची है। आईटीआर 1 और 2 दाखिल करन री काल आखिरी तारीख है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और नीट पेपर लीक मामला में दिल्ली राज जंतर मंतर सामने करी चाहिए।

0: प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स कानियों हथियारों का इस्तेमाल रो पूरा रिकॉर्ड हिफाजत सागे रखने का हुक्म दिया है। अदालत 20 जुलाई में संसद मार्च के दौरान जख्मी होने वालों ने इलाज का बेहतर सुविधा मुहैया करावन बाबत कहो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहनरी बेंच उन हुक्म दिनो। संसद रा पाव 17वां नवा दिन आज लोकसभा वंदे मातरम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 पास कर दिनो। इन तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन रो अपमान करने वाला यावाना गांवों में अड़चन पैदा करने सजा देने लायक अपराध बनाई चुका है। अड़ो करने वाला ने 3 साल तक कैद जुर्माना या दोनों सजा सुनाई जा सकेला। निजीकानी राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल माथे भारी हंगामा बीच चर्चा आज चलती रही। दिल्ली रा जंतर मंतर माथे प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई रा मुद्दा माथे सदन में शोर शराबो फियो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएएसवी त्रिवेणी माथे सफल समुद्री अभियान पूरो करने वाली महिला फौजियों की टीम सागे आज नई दिल्ली में मुलाकात की। अभियान में शामिल फौज रा तीनों अंगों ने 9 महिला अधिकारी 314 दिन में आखी दुनिया रो फेरो लगायो। इस मौके रक्षा मंत्री अभियान की सराहना करता थका इन्हें महिलाओं की ताकत और फौज रा तीनों अंगों बीच शानदार तालमेल री मिसाल बतायो।
1: अपने इस अभियान से मैं कह सकता हूँ कि

सावन की शुरुआत सागे राज्य में धार्मिक अनुष्ठान करण रो सिलसिलो शुरू फिर क्यों है शिव मंदिर में समारोह ए पूगन लागिया जातरो महादेव रो जल दूध बेल रा पत्ता और पंचामृत सागे अभिषेक कर रहा है।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सावन का पहला दिन राज राजेश्वरी मंदिर में भोलेनाथ रे विधि विधान और पूजा अर्चना कर जनता रे खुशहाली री कामना कीनी। संत शिरोमणि रविदास री जयंती रा सिलसिला में निकाली जा रही कलश यात्रा आज उत्तर प्रदेश और भरतपुर रा ऊंचा निगला पुगी। यात्रा रो स्वागत करता थका उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कहो कि संत रविदास जाति धर्म और वर्ग रो भेद मिटार मानव सेवा रो गेलो बतायो और विचार समाज सारू आज ही काम रहा है।
1: उनके क्या विचार थे ऐसे समाज का निर्माण करने की जिस सोच को आज और उसी सोच के ऊपर हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जब लिख रहे थे जब भी इनकी सोच का वर्णन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था वही सोच को आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचाएंगे, नए युवाओं के बीच में पहुंचाएंगे। नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए निश्चित रूप से उसमें संस्कार संस्कृति और एक मानव प्रेम की भावना जन जन तक पहुंचाएंगे।
0: राजधानी जयपुर में भारत टैक्सी सेवा री परख शुरू की है। सहकारी मॉडल मत आधारित इन सेवाओं मुसाफिरों ने किफायती सफर रो सुबितो मिलेला। ऐप आधारित इन सेवा ने दूजी कैब कंपनियों की तुलना में 10-15% तक कम भाड़ा वाली मानी जा रही है। भारत टैक्सी में मुसाफिरों बत्ती मांग वाला टीम या बारिश की बगत बत्तो भाड़ो नहीं लियो जावेला। भारत टैक्सी सेवा में टैक्सी चलावन वालों कोई कमीशन नहीं लियो जावेला जिन्हों हमारी आमदनी में बढ़ोतरी फैला। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। जयपुर में कार राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन शुरू फैला। देश प्रदेश रा न्यायविद कानून रा जानकार और नीतियां बनावन वाला विचार करेला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा तहत खरीफ 2026 सारो बीमा करावन री आखिरी तारीख 16 अगस्त ताई बधाई ची। देश में हाल ताई 5 करोड़ 32 इंच

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करी छे। आईटीआर 1 और 2 दाखिल करण रो काल आखरी दिन और सावन री शुरुआत सा गई शिव मिंद्रा में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो हुआ। मानो आज समाचार बुलेटिन काल सवेरे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करो जावेला। नमस्कार।

说的那个那个也无论无论真黑शाम के 7 बजे हैं ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं मुक्ता जैन और रामस्वरूप विष्णोई।

0: एक आदमी रो स्वार्थ नहीं है, और काल परसों कह रहा कि जट दरखत ज्यादा हुआ बट ले ज्यादा हुआ, कहीं कोई कारण हो
1: नहीं? नहीं, ऐसा ही बात है कि वो प्राकृतिक संतुलन है, जट पेड़ उसी बट नहीं उसी। और देखो सावन जी को महीनो है नहीं, खरीफ री जी की फसल होया करे, विंगो जी की बढ़ोतरी वास्ते बहुत ही चोखो समय मानो जाया करे है। और इन समय में खेता में जी की निराई गुड़ाई है, खाद रो प्रबंधन है, कीट नियंत्रण में व्यापा चोखा काम कर सका। और अभी आप बात कही कि किसान मेहनत करे भगवान का न जाके के कद नी बरसे कद मारी जो की आए हुए।
0: अब के तो इंद्र भगवान थोड़ी मोड़ी मेर करी, पर मेर में कोई कमी नहीं रखी। आज ही देखो आपने बीकाने रोड़ा डोड़ा अगले गांव में बज्जू कोलायत महानकार मोडायत उन्हें ठेठ पक्को खिंदा सरखे खिन्या ताई अगला मे हुयो है। और इन दोरा धरती री बाजरी री खेती और जेठ रो महीनो क्या करे कि बाग गाड़ा नहीं मिला, और थे बात खरीफ ही करी तो आज किसान खेत में बाजरे बीज रियो है, ग्वार है, मोठ है, तिल है, मूंग है, जट आपा ने सहज बाजार में मिले। बिर लारे एक धरती पुत्र री मेहनत हुए, बिरी बड़ी फूटरी ओड़खाण हुए। तो आपनो फर्ज बने कि प्रकृति रे संतुलन ने बनाए रखा, गणखराक दरखत लगावा। हाँ देखो एक सुरंगी रुत्र फायदो है कि थे कोई हुकी लकड़ी भी रोप होनी तो धरती में वह फूट और पेड़ बन जी। तो पेड़ लगाने रचो को मौको है, ये मौके ने चुकिया नार चुकिया चौरासी लागिया करे है, और भगत रे बहुड़ा मोती है बे नीपजिया करे, थे बीज ही फेंको तो मोती बनन उगी। और कहना चाहो यार,
1: मैं वो कहना चाहूँ कि रामसुर भाई जी को देखो सावन है प्रकृति रो संरक्षण रो टाइम है, जल संरक्षण रो है, पर्यावरण ने संतुलन रो संदेश देवा। और प्रत्येक भाई लोगों ना पाई कवा कि ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाओ ताकि बारिश रो वक्त है। और ई वक्त में कही है कि अभी रामसुर विष्णु भाई बताई है कि मोती मिलती बीज फेंक सा तो मोती मिलती, तो सगला मिल संकल्प
0: एक नुकता बहन आपने छोटी सी बात जल संरक्षण कितनी उमड़ी बात करी है थे। अठे जगह लोग पानी नहीं है भरते जाने घी में भरते, और उनाले रे भी काले टाइम में जब धरती माथे कठी दरखत नहीं हुए, दरा भूम जो की मरु भूम है, दूर दूर तई कोई रूख दिखे तो एक बापड़ी खेजड़ी है, कोई ऊंट अलडाम तो दिखे का कोई जाड़ कठे मिल जाए। आज मैंने कितनी साधना और तपस्या कर रही धरती ने हरी भरी बना रिया है, पानी री मेहता आज भी बीती है। और इन पानी ने जके ना अपन पार्लर पानी कहवा भी हम कहवा कि आ निर्जीव जो की है थारी बैटरिया देटरिया है मशीनरी इन्वर्टर री ए भी चार्ज हो जाए तो मिनख ने तो ऊर्जा मिले ही है। और बडेरा राज का खड़िन है, तालाब है, कुंड है, झील है, अपनी जकी बावड़ी है, फिर वो संरक्षण आप करन कुंड रे मायने पानी हाथ रो रखियो है। और भी पानी में यहाँ बरता कि आपने जे नल पानी नहीं मिले तो अड़ी बेड़ा में वो पानी अड्डो आवे। और सरकारी योजना है जल संरक्षण वाटर हार्वेस्टिंग, खेत रो पानी खेत में छत्रो पानी पर नालू नीचे उतरन कुंड में, अगर बेड़ो हुई तो अड़ी बेड़ा में अड्डो आई, जहाँ पैसा कमाए थोड़ी बचत करा तो टाबरा में कोई खुशियां दिला सका, बनाई बुराई कर सका। बी पानी रो मोल घणो ऊंडो है मुक्ता बहन, सुनने वाला इन बात ने जाने रबार पानी री मेहता है कि आप खेत रो पानी बहन दूजी जगह जावन को दो नहीं बचा रखो, बी छत्रो पानी बी ना जावन दो रे। कई भाई जगह है नी वो कोड़बो है मुक्ता बहन के भाई आप री गाड़ियां चमकावे, कोई सकूटी धोवे, कोई फटफटियो धोवे, इतो पानी डोले है। पर दो तीन दिन तक जब लारे नहर बंदी आई जन लोगों ने याद आयो कि पानी कहीं खराब कर दी। अब देखो कोरोना में अपन प्रकृति याद आई, पेड़ पौधा याद आया, तो थे भीड़ पड़े जन भगवान ने याद करो, दुख में भगवान ने याद करो, तो अड़ी बड़ा में यूं रखो याद कि आप रोज भगवान की सच्ची आराधना कर आई रुत ने और सुरंगी बनावा, तो पेड़ पौधा लगावन बचाएन राखा रब मन लागे बाजे मत एक गीत लो सुना।
1: मैं वही कहूं तो कहीं सुना रामसुर भाई रंग बिरंगी रुत है, आनंद भाई रुत है नी, तो आपने केवल मौसम परिवर्तन ही कोनगी बल्कि किसान पशु पालन और जिका आम जन बांगे लिए नई आशा वारो संदेश ले रही है ऋतु। और देखो संदेश तो अपना किसान भाई बन अड़ीक रहे नी चोखो सो गीतर लगा
0: दो गीतर लगा अड़ीक हो नी जनवार मिले बगीचे में घूमे नी सुधीर भाई मैं क्यों है गीत में थे हूँ क्यों जो कई बजाया जय ही बजाया लो सुना सा वो सीमा मिश्रा रो गाउड़ो आयो रे सावणियों आयो
1: हाँ सुना सा

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

0: तो सर आंसर भाई अभी मीठो सो सावन ऋतु को गाना सुनो और संदेशा सुनिया। और देखो आप बात करी अपने सुरंगी ऋतु की जिकी ऊर्जा समृद्धि खुशहाली वो प्रतीक हुए हैं। और अब आप देखो आगे बात करा कि जिको अपनो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और अठहरी जिकी किसान परिवार है वे खेती ने अपनी आजीविका रो प्रमुख मतलब साधन माने हैं। और इन वास्ते कही है कि पारिवारिक कृषि में पूरा परिवार या जना मिल खेती में सामूहिक रूप से भाग लेवे जिसे कही है कि किसान परिवार स्वयं खेती करे पशुपालन बागवानी मत्स्य पालन और अनेक तरह की कृषि गतिविधियां करे जिसे कही है पूरे परिवार ने फायदे मिले लाभ मिले और परिवार सदस्य जिका सगड़ा भरा और काम करे स्थानीय जिका संसाधन है बार उपयोग करे कृषि के साथ साथ पशुपालन में एक बागवानी भी करे है और उत्पादन उपयोग घरेलू आवश्यकता रहे अनुसार ही बाजार में भी करे है।
1: अब आप नाम पोलाओ कि पारिवारिक कृषि नाम की तो फूट हर थे बात बताई कि भाई सगड़ा जाना घर रहा चाहे नैना टिंगर हुआ चाहे टाबरिया हुआ चाहे बूढ़ा भाई माइत हुए। अब आप देख लो कि जहाँ हुड़ कराया जाना है कोई आदमी मोटो झाड़ झंकाट या बोरो लेन बाढ़ नहीं सके तो वो छोटी छोटी जगह घास फूस रिटर्न है बेटा बेरिया भेड़ा कर दे घर जगी बाई बेटे हैं वह घर रहे साफ सुथरो राख और बातों ले रहना बा मिनखा खातर जावे जने और डीग राख तो वो मिनख एक योगदान हम जाए कि भाई मारी जगी धरण है मारी जगी लारे आउड़ी लुगाई है बा आप रे बरतार रे खातर बातों ले रहा जने भी नहीं लागे कि मैं परिवार रा अगला मिनक आगे काम करा। टाबरिया ने भी संस्कार मिले कि देखो बडेरा इतना पच्चे खेत में काम करे हुड़ करे अब आ निनान रो भगत है तो टाबर नहीं जाने निनान प

0: टाबरिया ने बुलावन दे सका कि थे भाई गाय टोगड़िया है जगह खेत में चरार लिया हो। मेहबी मुक्ता बहन जब मैं ना हानी जने मोटा काम तो जानता को नहीं पर गाय भैंस रहा जगह छोटा टोगड़िया पा दिया हूं था बन में खेत में चरार लिया हूं था और फसल मेरे मायने बढ़न देता को नहीं ताकि घराड़ा हूं जानता कि भाई मारो टाबर भी की काम ही कहते आ बात कहनी चाहवा में नहीं लागो। अब जहाँ चौमासे रुत आई जन निनांदे पछे खेत में लोहिया टेंट से काकड़िया फोफिलिया ग्वार फड़ी हुई टाबरिया के करी ग्वार फड़ी हुई तोड़न ला कौन सके ग्वार उपाड़ दे जन बे टेंट से बेली कर बामो बीज काट हुका सके था कि फोफिलिया हो जाए। मारा कहना मतलब आई परिवार का से आदमी जब कोई पूंजी नहीं लागे हर हाथ में काम
1: मिल जाए
0: कोई आदमी वे लोग हुए नहीं किन किन वो काम कर लई मान लो पशुपालन है तो हगड़ा गाय भैंस रो दूध निकालने को जाने नहीं पर नीरो नाक सके है चाटो मेल सके है कने उबो रहे दूध रे धार निकलवा सके है नैना टोगड़िया ने खोल और दूजे खूंटो बदल सके है। यानी हर आदमी में हर टाबर में काम सीखा हो आप पछमु नहीं हुआ कि उम्र जाऊड़ और बिल नहीं खोदना जाने किसान रो बेटो और खेती नहीं जाने पशुपालन रो बेटो और गाय री धार काटनी नहीं जाने बोलबो तो मिली। देखो मैं यहाँ कोकू नहीं थे बणीजी वाला ये काम में लाग जो पढ़े याद मन लगार करो पर सुबह शाम मायतारी काम में मदद करो बानी लागी मारो टाबर मारे कहने में है कोई दूजी नशा पता नहीं करना ए परिवार में सीख मिलो और परिवार पहली पाठशाला हुआ और मुक्ता बहन मैं कई बार किया करूँ की भी पाठशाला जी पहले गुरु माँ हुए अब कह रहे कि घड़े जिसी ठीक री माँ जिसी डीक री अब माँ रा संस्कार खाली बेटी नहीं को जावे नहीं बेटा मैं टाबरा मैं घर में जेठ जेठानी
1: कोई पारिवारिक कृषि जो मतलब खाली काम धंधो ही को
0: नहीं सगे संस्कार
1: प्रेम भी तो बड़े नहीं सगे बैठे उठे बैठे
0: अगला है निनान कर रहे के लिए रहते बैठे हैं कोई काकड़ियो छील और जिमे लून मिर्च लगाए रहे जिमे बंदे मिठास भी तो ही है क्योंकि भेड़प में जो को मिठास है नहीं वो मुक्ता बहन एकला में कोई
1: एकला और संस्कार भी तो सीखे नहीं था बोले लेगी तो आने वाली पीढ़ी में बेबी ओई आगे वाले परिवार में रल मिल गए रहती नहीं।
0: अब एक री लकड़ी और बेड़ा प्रो बारो बारे में कोई तोड़ को सके नहीं नुकसान को कर सके नहीं एक लकड़ी में तो कोई दो पड़ोसी बात करी भाई फलाने की क्यों बात करनी मांगे तो अगला बेड़ा है
1: बेड़ा हो गया
0: वो जो कोई आंगले को उठावे नहीं और दो पैसा कमावा बारो मजदूर को लाना पड़े नहीं जो घना रही सो गया थे खेती बाड़ी पशुपालन रही काम रही बुआई रही निराई गुड़ाई रही सिंचाई रही प्रबंधन रही फसल रही
1: सगड़ा काम देखो ऐप हुआ बाजार मंडी में जाकर
0: बात हो रही
1: है तो पढ़िया लिखे है तो
0: खेत में नैना टाबर के करे कि स्कूल में आया पछे पिंपे में कांकरा गाल और बजाए जन बचिड़कलिया उड़ जाए जन फसल सुरक्षा में टिंगरा रो योगदान हो भाई बेटियां बातों ले राजे रोटी बना ले घर री साफ सफाई
1: पालन भी कर लेवे छोटा मोटा
0: लागुड़िया जगह छोटा पेड़ है बम थे दो डोली पानी तो गाल सको टाबर मोटा नहीं गया थे कम काम जानो
1: थोड़ा पडूड़ा टाबर है घर में पडूड़ा है बेबी तो जी आधुनिक तकनीक के बारे में बने शिक्षा दे सके।
0: अरे देखो कितनी फूटी बात के बनी जुड़ा हो तो कोई थे ये थारे फूट रूड़े फोन में छापे में बात और कोई हाथरी बात वडेरा ने बताओ वे कोई कृषि में नवाचार करी प्रगतिशील किसान बनी जन आप कदे चार ना बाऊ हथई करा पण अबे हथई घणी उगी में लागे थे पाछो कोई हावन भी देखो सुनाओ के
1: हां
0: सुनो

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

0: अब देखो यूं कात रह रही है बातें पर चकरा कार्यक्रम में छेकड़ तो तोरा मत आगे कोई संदेश दंदेश सुनना लो।
1: हाँ सुना।
2: जलवायु और पानी के भीतर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आज वो गर्मी, अम्लीकरण और प्रदूषण जैसे बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ, मैनग्रोव और समुद्री घास जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहे हैं, लेकिन महासागर, हवा और लहरों से स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ मछली पकड़ने के जरिए और समुद्री जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी करते हैं। इसलिए जलवायु को स्थिर और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महासागर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने कुछ ही दशकों में लगभग 50% कोरल खो दिए हैं।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मुक्ताबेन सुरंगी रूप में बात थोड़ू कर पारिवारिक कृषि माथे करी और मौसम रे पूर्वानुमान रे अताई करी फसल बीमारी बात करी मंगला पशुधन रे बात करी अब अताई काल फेर कराला अब जावा जाने तो काल कार्यक्रम फूटी बात लेन पाछा हम तो सीख दे रहो साहब तालो साथी रामश्री बिस्नाई
1: और आपकी बहन मुक्ता जी ने घड़ा घड़ा राम राम।

आवाज के स्वर में अभी आपने सुनी ये रचना। सुगम संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं स्वाति नाटेकर के स्वर में ये रचना।

0: स्वाति नाटी करके गए इसका समय के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मेरी उम्र 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ष और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से रिले होगा संसद समीक्षा।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा

ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहाँ शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों के एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान है। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थी और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया।

हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश जी बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई, लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोजी छिरिंग, लिपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है

उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों की गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे 2,80,000 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा के एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रटास, झारखंड मुक्त मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

आकाशवाणी बीकानेर की ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोता, इस समय रात्रि के 8:15 बजे हैं। अभी सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना फिल्म सावन में। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आवाजें थी तलत महमूद, लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम था प्यार की प्यास। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम

सोफी और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अभय सिंह गहलोत और साथियों की आवाज में।

0: लोक संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढेरों चैनल से सुन रहे हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: अब्दुल गनी के गायक संगीत के साथ ही लोक संगीत का एक कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के बेलमेरू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 5:09 बजे को है। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार, पहले समाचार संध्या, उसके पश्चात न्यूज एट 9।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। तई मानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान

0: समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्पा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
4: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
5: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी।

0: फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: भारत सरकार ने पहले भी कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
2: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर के बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुसर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित।

0: ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले दो से तीन दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पहली जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSPACE ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSPACE अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नागरिकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिवा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस लेजिस्लेशन ग्रांटिंग वंदे मातरम द सेम स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन एज द नेशनल एंथम। Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest in improving seafarers.

चैनल है। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता।

फिल्म बरसात की रात में सुमन कल्याणपुर, कमल बरोट और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारो चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 9:30 बजे हैं। पेश है सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजलें। सुनते हैं कार्यक्रम में गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

भीम सिंह और मितान सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी ये गजल। आइए सुनते हैं सीमा अनिल चहल की आवाज में ये गजल।

0: सुनील सहगल की आवाज में गाई इस गजल के साथ ही गजलों का ये कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: नाउ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: क्वेश्चन नंबर 21।
1: प्रश्न संख्या 121, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्येक

0: And definitely it's providing a benefit to the concerned community, which is the question raised by the particular one. Yes.
1: Third supplementary, श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी, एनवायरमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए? धन्यवाद।
0: मिनिस्टर, माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का विषय है वह हमारे विकास की प्राथमिकताओं में है। बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है। और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। और ये निश्चित रूप से देश की बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है। इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्वम कुलकर्णी जी।
2: धन्यवाद सभापति महोदय। बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है और दूसरा भी इससे जुड़ा है कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर हुई बायोडाइवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या? ये मेरा प्रश्न है।
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है। वो बायोडाइवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रगन जी।
3: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है? व, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनके रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, थ्रू पी विल्सन जी।
4: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर, द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers, and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such absenteeism risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
3: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
5: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हुई है, और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना

0: एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आयल वाले जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है। हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है। कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं इश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद भोरा जी।
2: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेप इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ the new 50% basic wage rule under the code on wages will impact workers eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
3: Honorable Minister, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट ने वो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला है देश बन गया। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट एसईएसआईसी के लाभार्थी नहीं थे, ईपीएफओ में उसको लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ईएसआईसी के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ईएसआईसी के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मेटर्निटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा और लेबर कोड तो 2019-20 में बना था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इंप्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वीवीजीएमएलआई करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म

0: कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिलाकर हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए तो लेबर को हितकारी।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान महेंद्र कुमार नायक जी।
2: थैंक यू
1: सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय वंशिक भाई जी से प्रश्न है कि सर जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उसी इंडस्ट्री को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए।

0: मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उसी इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: माननीय मिनिस्टर, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदले और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जो लोग स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला वो ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हांसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके ऊपर जुड़ी हुई है। उनको कि कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर को उसको क्या चाहिए उसके ऊपर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए वो जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, एक महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित करी है।
2: नाउ क्वेश्चन नंबर 123, श्रीमान संतोष कुमार की।
3: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अनुसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य,

0: क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। ख, क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ग, क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है। और घ, देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
2: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये क्वेश्चन लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेज है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे, वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस है बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, तीन क्लासिफिकेशन भी है, ए बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
4: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पुरता खाना मिले, और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अब मोबाइल तो हम काउंट ना करें वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं। उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्पविकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का एबीसी यानी कि एक मेट्रोपोलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा, और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेज उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार एड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
3: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गृहराजन जी।
5: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 ईयर वंस और 3 ईयर वंस और 2 ईयर वंस रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस इज नॉट अनाउंस ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
4: मिनिस्टर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए

0: हर साल में दो बार VDR के द्वारा VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
2: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस वाइज हो रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास से बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने की कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंटेक्ट जेल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन लोगों को लिए कुछ सोचे हैं क्या? और कि ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
0: ऑनरेबल मिनिस्टर नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ते तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहां जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को, तो अपने सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ, भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंट्रोल लिस्ट में है तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं, किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
3: 124 प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्त प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं। रक्षा निखिल खड़से, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी
1: है।
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से

0: गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पर हमारे पैरा एथलीट को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स हैं वो टॉप स्कीम में भी है जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था, पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफी अग्रसर भूमिका रखी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए, और पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक अभी 6 है और जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
2: शुक्रिया चेयरमैन सर। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं, और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा, और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का या उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा।
3: शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा दल आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और नहीं केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, 2 दिन की चिंतन बैठक करी थी, और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी, और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है। सरकार की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही हैं, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही हैं, और माई भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग संदोन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना

0: आना होगा। हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इन्विटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवा मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: हेड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
2: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं का पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं। 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग हो रही है पूरे देश में और लगभग 6,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए।
1: धन्यवाद। सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
3: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा दशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण में को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहिए?
0: माननीय मिनिस्टर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अध्ययन चलाना है जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन सरस उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं ऐसे कई टाइप की स्टडी में ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में ये उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए उनके लिए दो ही रास्ता है, एक कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग कई समस्या उसके लिए हमको एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे उसकी स्थिति उसका ट्रेंड उसकी जीवन शैली ये सब एनवायरमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है

0: और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125 डॉक्टर जोगी नाथनाथ वॉक मारे।
2: क्वेश्चन नंबर 125।
3: प्रश्न संख्या 125। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुनिश्चित कर रही है? और ब, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल सफाई एवं स्वच्छता अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
4: फर्स्ट सप्लीमेंट्री यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
2: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
1: मिनिस्टर
3: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
5: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं। महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारे हैं। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में फ्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने का अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, फोन बच्चा फायदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है। वुमेन एम्प्लॉय के साथ इसका इनलॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में? हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहे हैं, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्क फोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इससे पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसका आंकर किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल के अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइबर, नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बना है। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.6 लेकर इतना बड़ा रेट में हमारे

0: एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके कारण है अवकलन सर। हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं, अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसी में 40% महिला है सर। हमको बोलने के लिए खुशी होता है 40% महिला है, अभी 1% ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेनर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया, अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले ट्रेंच का पैसा लोग एंटरप्रेनर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं। यानी किसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना, यानी नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए, इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरे देश में महिला को एंटरप्रेनर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए, यानी सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 सेंटर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार मेला हम बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में से प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताइए 29 कानूनों को हम निकाल के ब्रिटिशर्स का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है, इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताए सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में, एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस या ना इक्वल वर्क के लिए ऐसा हम किए हैं सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक का काम बढ़ा है सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर, ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहले बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षितता कायम रखना एंड उसका सुरक्षितता के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेस फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर, एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही

0: या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी
1: से।
2: चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरों से सर, विश्वकर्मी से, विज्ञान प्लेटफॉर्म वर्कर्स से, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले, डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
3: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
2: उत्तर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए, इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्ज्वल देवराव निकाम जी।
4: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
5: प्रश्न संख्या 1

0: सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संगीकृत मामले सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार।
1: चेयरमैन सर, इस पर सभा पटल पर रख लिया है। थैंक यू।
2: सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्ज्वल देवराव निकाम जी। थैंक यू सर। Honorable Minister, while reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance provided. So my pinpoint question to you, has the government undertaken any independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction or quality of representation provided to the beneficiaries?
1: Honorable Minister, धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चा हुआ, कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब उनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा। ये जिलों में भी काम करता है, स्टेट में भी करता है। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालपा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो तो स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं। डिस्ट्रिक्ट में वो नालपा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत तीन सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पर रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, इसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए।
2: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषी इंडिया जी।
3: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

0: जानना चाहता हूं उड़ीसा के ट्राइबल खतरों के में स्थानीय भाषा और में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए
1: हैं। सभापति महोदय, माने सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज अभी भाषिनी टू हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में है मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिनी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय दृष्टि से संबंधित है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानता है उनके लिए क्या भाषिनी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इससे हम संस्कृति का विकास करेंगे, विकास भी करेंगे, विरासत को भी बताएंगे।
2: बिहार स्टैंड्स अजोन्ड टू मेक एट 2 PM।
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। युवा लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: 350 की मोहर्ज पर रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के बृजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि

0: और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अनेक हमारे श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sandra Mujtaba. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi has said the government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, for the past several decades, every state